हां जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब जी। ਵੱਜ ਕੇ 31 ਮਿੰਟ ਔਰ 33 34 35 36 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਕੁਛ ਖਾਸ। जी हाँ, ये मुलाकात है खास क्योंकि आकाशवाणी पूरे कर रहा है अपने 90 साल। वल जी, तुसी सुन रहे हो अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम दिल सो दिल तक दा एक प्यारा जा एक सफर, ते मैं हूँ तुहाडे नाल तुहाडी अपनी दोस्त निशा। अज दी ये सवेर सिर्फ एक नवी सवेर नहीं, ए ओ सुहाना पल है, ओ खूबसूरत पल है जिथे असी मनान जा रहे हैं एक अजिहा सफर, अजिहे सफर दी खुशी जिसने सानू पीढ़ियां दे नाल जोड़िया। बिल्कुल जी, जिसने पीढ़ियां नू जोड़िया, दिलां नू मिलाया ते आवाज़ नू एक खूबसूरत पहचान भी दिती। बिल्कुल जी, सही सही सुन रहे हो। अज असी मना रहे हैं, अज असी मान कर रहे हैं कि आकाशवाणी ने अपने 90 शानदार साल जिहड़े है वो पूरे कर ले ने। लो जी, एक एहो जी यात्रा है, एहो जा सफर है जिसनू बहुत समा जिहड़ा है बीत चुकिया। और अज असी आकाशवाणी दे वेले तो इस वेले साड़ी शुरू हो रही है एक खास वॉकथॉन। जी हाँ, खास वॉकथॉन जिहड़ी है वो शुरू हो रही है एक एहो जी यात्रा जिथे असी सिर्फ मील जिहड़ी आ वो नहीं तय करांगे, सगों सेहत, एकता और एक पॉजिटिव सोच का संदेश भी हर दिल तक पहुँचावांगे। वल कहते हैं कि जिंदगी विच अगे वधना होवे ना तो पहला कदम चुकना पैंदा, अते आज जो पहला कदम असी सब इकट्ठे जिहड़े आ चुकन जा रहे हैं और ये हर कदम यही दसेगा कि हौसले की रफ्तार अते उम्र आ जिहड़ी आ वो नहीं वेखती, जे जज्बे की उड़ान नू कोई मंजिल नहीं रोक सकती ते

जी बिल्कुल जी, गीत संगीत का साथ जिहड़ा है इसे तरह चलेगा और थोड़े नाल गलबात और जानकारी जिहड़ी है बिल्कुल फिर तो लवांगे। फिलहाल दे लई मैं एक प्यारा जिहा गीत जिहड़ा है होर जरूर जरूर सुनानी आ, लेकिन गल्लां बातां दा ये सिलसिला भी जिहड़ा आ ओह नाल दे नाल ही चलदा रहेगा। और गल्लां बातां दे सिलसिले विच अगर असीं आकाशवाणी दे नाल जुड़ी हुई जानकारी दी गल करिए तां बहुत सारियां इहो जिहियां चीज़ां ने जे असीं उहनां नूं अपने ज़हन दे विच नाल नाल जोड़दे होए अगे इस चीज़ नूं दसीए कि आकाशवाणी दा जिहड़ा परिवार है तकनीकी क्रांति की अगर गल करिए तकनीकी क्रांति जिहड़ी है मीडियम वेव तो लैके FM DTH तो मोबाइल तक 1960 विविध भारती जिहड़ा आ शुरू होया सी। फिल्मी गीतां ने रेडियो नूं घर घर पहुँचाया, बिनाका गीतमाला और इहदी गल करिए तां अमीन सयानी की आवाज़ दे विच देश दा पहला काउंटडाउन जिहड़ा आ शो शुरू जिहड़ा आ बनिया सीगा। और इस दे नाल होर जुड़ी हुई इनफॉर्मेशन जिहड़ी है प्रोग्राम दे विच नाल दे नाल जिहड़ी है मैं जरूर दिंदी रहांगी, लेकिन फिलहाल मैं क्या एक होर सोहना जिहा गीत हो जावे देश भगती दा एहसास भी जिहड़ा आ ओह सानू आकाशवाणी परिवार दे नाल जुड़ के रह के ही मिलदा रहा आ।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से कड़ी दी सुई दी मुताबक 7 बज रहे ने और 7 बजते ही बेला हो जाता है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता शुभदेव अधिकारी पश्चिमी बंगाल के नवे मुख्यमंत्री होंगे। तमिलनाडु में सी जोसफ विजय की अगुवाई वाली TVK पार्टी राज में सरकार बनाने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की मजबूती और सुरक्षा सिर्फ सरहदों की रक्षा तक सीमित नहीं सगो समाज वातावरण और इसके नागरिकों की सुरक्षा नाल जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय महिला कमीशन ने औरतों खिलाफ किन्होंने जिनसी जुर्म संबंधी मामलों में तेजी नाल सुनवाई सख्त निगरानी और पैरोल की पाबंदी की मांग की है। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक भाईवाल वजों दहशतगर्दी का मुकाबला करने लई दुवल्ले सहयोग की महत्ता ते जोर दिता है। भारत और आस्ट्रेलिया विचकार नवी दिल्ली विच रक्षा दसवीं रक्षा नीति की गलबात हुई है। पंजाब कर विभाग ने एक संगठित फर्जी बिल्डिंग नैटवर्क का सफलता नाल पर्दाफाश करदिया लुधियाना की एक फर्म के डायरेक्टोरेट नूं वड्डा GST घोटाला करन दे दोष विच गिरफ्तार किया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज नाल मुलाकात करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकण संबंधी कानून दिया वक्-वक् मदा ते विचार वटांदरा कीता है। पंजाब सरकार ने यूनिफाइड सेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करके माली शासन विच एक वड्डा मील पत्थर कायम कीता है। अते भारत की सिमरनजीत कौर शिंगाई विच तीरंदाजी विश्व कप का रिकवर व्यक्तिगत मुकाबले के सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। ते इसी हुण तक दिया FM न्यूज़ हेडलाइंस। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से वेला हो रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का।

0: उठ गई हाँ, मैं तो उठ गई हूँ, तुसी उठे हैं कि नहीं उठे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जलंधर।
1: आवाज जानी पछानी लगती
0: मैं
1: कोई,
0: मैं तुहानू भी गुड मॉर्निंग कह रही है। वैसे निशा
1: मैंने सुन गया कि तुम मैनू गुड मॉर्निंग कह रहे हो, मेरे वालों मॉर्निंग गुड उदो हो गई सी जो तुम सवेरे मेरे को 5:30 आके बह गए।
0: हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये जी मॉर्निंग है गुड पता कि हो रही है अज जो मैं थोड़े चेहरे से ग्लो नजर आ रहा ना।
1: ओह माय गॉड,
0: क्यों आ रहा है?
1: क्यों आ रहा है?
0: इसी वजह करके आ रहे क्योंकि अपने दोनों ने ग्लो का कारण ही एक है।
1: हाँ,
0: क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स विद आकाशवाणी।
1: बिल्कुल जी, 90 साल आकाशवाणी ने अपने जेड़े है पूरे कर लेने। और केक लेके आंदा?
0: केक नु छड्डो, तुसी पहले गले मिलके मुबारका लो ते मुबारका दो अपने लिसनर्स नु।
1: बिल्कुल जी, और ये मुबारका दा दौर जिहड़ा है अज दे सिलसिले दे विच इस तरह बरकरार रहेगा। वैसे मैं दस दिनी आ तुसी आवाज तो वैसे गैस लगा लिया होना, पूजा टोहानी जिहड़ी है ना इस वेले मेरे नाल बैठे हुए ने। और पूजा मैनू दसो जिहड़ी तुहाडे चेहरे ते एक जिहड़ी एक्साइटमेंट आ ओह तां मैनू नजर आ रही है। अज तुसी वॉकथॉन दे विच गए है ना, और उसका हिस्सा सी, मैं तो स्टूडियो दे विच वी तां तुहाडे कदमां दी आहट ही महसूस कर रही सी।
0: नहीं, तुसी मेरे दिल च सी, मेरे नाल सी।
1: ओके, मैनू दिल च रखिया क्योंकि कनेक्शन है ना
0: दिल से दिल तक।
1: सिलसिला सी कंटिन्यू रखना। मैनू हुण तुसी दसो, मैनू जिहड़ा तुसी मिस कीता उस वॉकथॉन दे विच, तुसी अपनी अखां दे नाल जो वेख्या जो महसूस कीता ओह साडे लिसनर्स दे नाल जरूर सांझा करो, क्योंकि लिसनर्स ही ने जिहड़े साडे इस 90 साल दे सफर नूं ना बहुत ही खूबसूरत बनाउंदे ने।
0: बई मैं ते हमेशा कहनी आ कि लिसनर्स हैगे ने तां ही असीं आ। सो जी, एक बारी फिर तो अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एंड गुड मॉर्निंग आज दी ब्लेस्ड जी मॉर्निंग तुहाड़ी दोस्त आरजे पूजा टोहानी वालों, क्योंकि आज दा दिन बहुत स्पेशल है। आज दा दिन वैसे ते सेलिब्रेट कर रहे हैं सी जर्नी 90 ईयर्स आकाशवाणी दे नाल, पर मैनू लगदा है कि आकाशवाणी दे नाल जिहड़ा हर दिन और हर पल है ना ओह ही स्पेशल है, क्योंकि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ साडे प्यारे प्यारे लिसनर। सो अज दिल तो एक वड्डा वाला ग्रेटफुल वाला थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो जिन्हें जिन्हें ने भी ट्यून किया हो सू इस वे 102.7 ते 103.6 ते और नाल दी नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते मेरे वालों यानी कि पूजा टोहानी वालों और
1: मेरे वालों भी, मेरे वालों तो वैसे सवेर दियाँ मुबारक मिल रही ने। और मेरा अज मुबारक का ये जो सिलसिला है ना, मैनू लगता रात के जब तक साढ़े अज के सिलसिले खत्म नहीं हो जाते, कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहना भी चाहिए। ये एहसास ये खुशी जब तक असी जाहर नहीं करांगे तो किवें पता चलूगा साढ़े लिसनर्स नू कि असी सुपर एक्साइटेड रहे।
0: मैनू पता तुसी मेरा सफर जानने के लिए उत्सुक हो और मैं भी अपना सफर जान शेयर करने के लिए उत्सुक हाँ, लेकिन मैं एक वड्डा वाला थैंक यू ना दिल तो करना चाहनी हाँ सारे ही लिसनर्स नू, खास करके आकाशवाणी नू जिहदे नाल जुड़न दा मैनू मौका मिलिया।
1: और जिन्हां दे सदके असी एक्चुअली हाँ
0: एग्जैक्टली मैं ना हमेशा निशा मैम इना गल करदी हुंनी आ कि तुहाडे नाल ते हमेशा ना मैं गल करदी आ कि जदों ना मैनू लगदा है कि बंदे दा कोई ना कोई एदां दा इक पुण्य कर्म हुंदा है जिहनू ना परमात्मा रिवॉर्ड करना चाहुंदा है, किसे 10 नहीं 100 नहीं 1000 गलतियां शायद पापां तो बाद अगर अगर एक गलती दे ना अच्छा
1: कर रही है साडी कुड़ी, बिल्कुल थोड़ी भावुक हो रही है।

जिंदगी जिंदगी तो वैसे छोटी छोटी खुशियां दे नाल भरी हुई है, लेकिन ये सारिया छोटिया छोटिया खुशियां किदां भरदियां ने जिंदगी दे विच, छोटे छोटे प्यारे प्यारे लम्हयां दे नाल भरदियां ने। और ये लम्हे ऐदे नहीं बनते, हर रोज एक एक पल जो जुड़ता है साढ़े नाल जिंदगी दे विच, खट्टे मिठे प्यारे नमकीन कदी कदी स्पाइसी, ये सारे लम्हे मिला के बनती है जी जिंदगी। और इस जिंदगी दे विच सारे ही तरह के रंग होने जरूरी ने, इक्को ही रंग जिंदगी नू भी कर देंदा ना बोर। और ये सारे ही रंग जिवें कि इंद्रधनुष दे रंग

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: कि कुड़िए कुड़िए बिल्कुल जी, असी भी पूरी ना एक्साइटमेंट दे नाल कह सकते हैं, पूरे जोश दे नाल ना अंदर नच रही हैं असी दोनों जनियां, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। ओहो एक सेकंड, पूजा खराब कर दी की
0: आ, अशने पशने जे लाई रखे आ,
1: अशने पशने लाने नी, मैं अज इन्नियां लालियां सुर्खियां मेकअप जे करके आई हुई हां, तुसी दीदी एवें हाथ जे मारी ना चलो, मेरे ब्लश खराब हुंदा पिया आ।
0: अच्छा ओके, ते अच्छा अशने पशने ला के इदा लगदा कि बड़ी सोहनी लगदी मैं, है ना।
1: अशने पशने की हुंदा आ?
0: अशने पशने आही जो लेपा पोथी जिन्नू असी कह देने आ।
1: अच्छा लीपा पोथी, मैं तैनू प्लास्टर ऑफ पैरिस कह देनी हुंदी। भाई देखो अज शहर दे विच वॉकथॉन ते जाना सी,
0: ओहो
1: कोई देख ही लैंदा है, सोहने बन के ही आना सी स्टूडियो
0: बेफालतू
1: मतलब वाली बना दिता, यानी के बेफालतू चीज फालतू नहीं ना रही, वो मतलब वाली बन गई है।
0: अच्छा अशने पशने दे नाल जुड़िया होया कोई अखर बना के दसो, चलो
1: अशने पशने टशने।
0: नहीं नहीं नहीं इदा नहीं, अशने पशने जिदा आप बोलते ना, अशने पशने अपने पुराने नवे पुराने, इदा कुछ आप जोड़ीदार बना के दिखा।
1: आंडी गुआंडी
0: आंडी गुआंडी यानी कि साड़ी मां बोली दे विच ना बहुत सारे एहो जे अक्खर ने
1: जिहड़ा दूसरा अक्खर असी लाउणा ही आ।
0: हां मतलब कि
1: रोटी रोटी,
0: हां मतलब
1: पानी शानी,
0: हां। अच्छा एक ना बैकग्राउंड मेरा पीछे चेंज कर दो, बैकग्राउंड पीछे चेंज कर दो, है ना, बैकग्राउंड भी ते पीछे
1: भी चेंज कर दियो
0: मतलब कि मीनिंग जिहड़ा आ ओ एक ही आ, लेकिन असी कदी, अच्छा तुसी पूजा कदी इदा कीता, एक हाथ ना पानी दी भरी बाल्टी चक्की होवे ते दूजे हाथ नु दीवार लगी हुई लाइट हैंगिंग लाइट की गल करा, लाइट तुहाडे सिर तो काफी दूर है, फिर भी अपनी सिर नीवा करके लगे
1: हो, मतलब होवो तुसी भावे 4 फुट दे फीलिंग 6 फुट दी,
0: मतलब बहुत सारिया एहो जिया चीजा हुंदिया ने, एहो जिया गल्ला हुंदिया ने जेडिया की असी करते रहने और कदे कदे उन्होंने एहसास भी नहीं जाहिर हो पाता। सो मैं लगता है कि स्टूडियो दे विच होर भी बहुत सारे आरजेज आ गए ने,
1: आरजेज नहीं आ गए ने, इन्हां नाल लड़ाई है, जदों असीं इन्हां नूं बुलाउंदे पए सी ते इह अपने अशने मशने च नहीं अशने पशने च लगे होए
0: सी, अशने पशने च लगे होए सी, अशने पशने वैसे देखो नैचुरल किन्ना ग्रो, अशने पशने की लोड़ ही नहीं। आईपीएस तुसीं आ गए अज्ज?
2: बिल्कुल जी, सब तो पहला जिहड़े स्रोते सुन रहे ने उन्हां नूं बहुत बहुत वधाई है जी, 90 साल बहुत ही प्यार है एफ एम रेनबो दे नाल सानूं तुहानूं सारिया नूं,
0: बिल्कुल
2: ते बहुत खुशी हो रही है कि हुणी असीं बार खा पी के आए हैगे,
1: मतलब इन्ने स्वाद पी भी लिया,
2: हां जी कड़ा पानी चाह,
0: खा पी
2: चाह पानी, चाह पानी
1: देखे देखे देखे,
0: चाह पानी पानी भी, चाह दे विच पानी सी ना तां करके
1: रोटी छोटी।
0: पूजा आईपीएस दे नाल ना जिहड़ा आईपीएस अपना असीं अगर सफर दी गल करिए ना, ते आईपीएस ते मैं अपनी गल करां 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ,
2: ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 April ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਸੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 20 ਵਰੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 20 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ।
1: ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਦਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ 1 ਦਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ This is actually a literally milestone. ਮੈਂ 1 ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੇ 90 ਸਾਲ
0: ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

0: हाई फाइव और अब बेसब्री किसी दी देखिए कंट्रोल नहीं हो रही
1: कंट्रोल
0: कोई और भी बहुत ज्यादा बेसब्र
1: मैं बहुत ज्यादा बेसब्र हाँ क्योंकि मैं जुड़ी हाँ जी आकाशवाणी के नाल और मैं ना तुम दसा मेरी खास गल तो की रही है कि मैंने इन्ने सारे प्यारे प्यारे दोस्त मिले है और इन्ना प्यार मैं मिले साढ़े स्रोतिया का इन्ना प्यार मिले सब लिए थैंक यू सो मच 90 साल की तुम सारे मुबारक मैंने बड़ी ज्यादा काली है मैंने बड़ी भुख लगी इस करके मैं चलो बाहर जानी
2: हाँ
1: दसना भूल गई
2: काली वाली कुड़ी असं तो ना पूछना भूल गए अपना ना तो नहीं दस
1: मैं दस मैं जी आर जे सुरभि और मैं पता कई स्रोते मैं जान के हो गए
0: मैं इन्होंने नाम के नाल पता एक दूरदर्शन की याद आई मतलब मैं इन्हों हमेशा जो भी देखती मैं कहनी मैंने इदा लगता मैं दूरदर्शन के ना पुराने जमाने वाला टीवी देख रही मैंने सीरियल याद आ जाता बड़ी नॉस्टैल्जिक जी फीलिंग आ जाती
1: बस बच्चे जम्मी से ना उदो नटक आया
0: गल्ला पता ऐदा ही चलती रहनगी सैलीब्रेशन का दौर ऐदा ही चलता रहेगा असं अपन खट्टिया मिठिया प्यारिया नमकीन और मिठिया मिठिया यादा तुहाड़े नाल सांझियां करते रहेंगे और जो नहीं रुकेगा वह है जी जशन
2: बिल्कुल
0: आकाशवाणी
2: मना रहा है अपने 90 साल आकाशवाणी।

बस हुण तो कुछ कु पलां दे इंतजार ते तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां। सो बने रहो आकाशवाणी दे FM रेनबो चैनल ते।

सकत रही थी बीच फौजी सलाहकार व चौ सेवा निभा रहे ने। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को समुद्री फौज मुखी नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस समय समुद्री फौज की पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वजो सेवा निभा रहे ने। उन्हां दी भारतीय समुद्री फौज में करीब चार दहाके की शानदार सेवा रही है। ये खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RN जलंधर। आकाशवाणी अज अपनी स्थापना 90 साल पूरे होने मना रहा है। आकाशवाणी

the X handle at the rate AIRR in New Zealand. आकाशवाणी अज अपनी स्थापना के 90 साल पूरे होने नूं मना रहा है। आकाशवाणी की स्थापना 8 मई 1936 नूं ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुई सी। अज इस खुशी के दिहाड़े ते आकाशवाणी दे पंजाब स्थित मुख स्टेशन जलंधर अते पटियाला विच एक वॉकेथॉन कराई गई, जिसनों पंजाब के कलस्टर हेड अते डीडीजी श्री रणजीत मीना, दूरदर्शन के डीडीजी आर एल जारंगल ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। अज दोवां थावां ते इस वॉकेथॉन विच आकाशवाणी स्टेशनों के मुलाजमान समेत प्रोग्राम पेशकर्तावां अते बहुत सारे स्रोतियां ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया। इस मौके जलंधर FM रेनबो के स्टूडियोज़ तो लाइव प्रोग्राम भी किया गया, जिसका स्रोतिया ने बेहद आनंद माणिया। जिक्र योग है कि आकाशवाणी की स्थापना 8 मई 1936 नूं ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुई सी। उस समय तो लैके अज तक इसने लगातार लोक सेवा के मिशन नूं निभाउंदिया देश की तरक्की विच अहम योगदान पाया है। देश समेत पंजाब भर विच लोगों तक हर जरूरी सूचना पहुंचाना, खास करके हरी क्रांति दौरान किसानों तक नवीं जानकारियां पहुंचाउण, जंगा समय लोगों नूं जागरूक करन ते होरना जानकारियां सांझा करन विच इस दी भूमिका काबिले तारीफ रही है। इस तो इलावा कुदरती आफतां ते होर संकटकालीन हालात विच भी आकाशवाणी ने समय सिर सही जानकारी पहुंचा के समाज लिए अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विच वध रहे नशीले पदार्थों के खतरे की स्थिति से चिंता प्रकट की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज वल्लों नशीले पदार्थों नाल नजिठण के तरीके विच एक बुनियादी तब्दीली की मांग की, नाल ही कहा कि मनुखी नुकसान चिंताजनक ने। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ते जस्टिस जॉयमाला बागची दी बैंक ने एक ताज़ा घटना का हवाला दिता, जिस विच एक मां शामिल सी जिसने अपने सारे 5 पुत्रां नूं नशियां दी लत कारण गुआ दिता। बैंच ने कहा है कि नशीले पदार्थों का खतरा एक अजिहे बिंदु ते पहुंच गया है जिथे केंद्र सरकार की दखल अंदाजी जरूरी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने राज अते केंद्रीय एजेंसियां दोवां नूं नशीले पदार्थों के खतरे नूं खत्म करन दे टीचे वल काम करन लई कहा। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत EU सम्मेलन के नतीजों की शलाघा करते हुए इसनों रणनीतिक भाईवाली लिए एक मोड़ दसिया है। खजाना मंत्री कल नवी दिल्ली में यूरप दिवस समारोह को संबोधन कर रहे सन। सोमनाथ मंदिर की मुड़ उसारी की 75वीं वरेगांठ सोमनाथ अमृत पर्व 2026 कल अधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। 5 दिनों के इस जशन विच मंदिर विच वैदिक मंत्रा ते रूहानी ऊर्जा दरम्यान देश भर के श्रद्धालु दर्शनों लिए पहुंच रहे ने। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस ते यूक्रेन दरम्यान 3 दिनों की जंगबंदी का ऐलान किया है। यह अस्थाई जंगबंदी 9 से 11 मई तक रहेगी, जिस दौरान दोवां देशों विचकार सारियां फौजी कार्रवाइयां नूं रोक दिता जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद इस तजवीज पेश की सी अते इस विच दोवां पासियां तो 1000 कैदियों का वटांदरा शामिल होगा। खेडा मैच IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीती रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम विच दिल्ली कैपिटल्स नूं 8 विकटां नाल हरा दिता। अज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम विच गुजरात टाइटन्स नाल शामी 7:30 बजे होगा। फुटबॉल विच भारत ने कल चीन के सुजो विखे अपने आखिरी ग्रुपी मैच विच लेबनान नूं 4-0 नाल हला के पहली बार औरतों के FC Under-17 एशियन कप के क्वार्टर फाइनल लई क्वालीफाई करके इतिहास रचिया है। भारत लई 7वें ते 85वें मिनट विच प्रीतिका बर्मन, 36वें मिनट विच अलवा देवी सेंजम अते 72वें मिनट विच जोया ने गोल किए। इस टूर्नामेंट के सैमीफाइनल विच पहुंचने नाल भारत औरतों के 2026 FIFA Under-17 विश्व कप विच जगह बना सकेगा। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। सुमेंदु अधिकारी अज सवेरे पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री वजों सहु चुकणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृहमंत्री अमित शाह सहु चुक समागम विच शामिल होणगे। तमिलनाडु विच सरकार दे गठन नूं लैके अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम भारत के नवे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विच वध रहे नशीले पदार्थों के खतरे की स्थिति से चिंता प्रकट की है। फुटबॉल विच भारत ने औरतों के AFC Under-17 एशियन कप के क्वार्टर फाइनल लिए पहली बार क्वालीफाई करके इतिहास रचे है। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 होगा। नमस्कार।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

हाँ जी सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब एंड वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, दिस साइड योर फ्रेंड मोहित रूबल। आई नो तुसी सोच रहे होगे आ कित्थों आ गया, हुण तक तां निशा सी, बिपन सी या फिर होर भी दो सी, पर जनाब अज असी 90 सालों का खास जिहड़ा सैलीब्रेशन है उह आपां इंजॉय कर रहे हैं, आकाशवाणी दे 90 साल। आई होप तुसी भी साडे नाल इन्ना ही इंजॉय कर रहे हो, पर अगर तुसी होर इंजॉय करना चाहते हो तो अज दा साडा जिहड़ा खास प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है दिल अपना पंजाबी, उहदे विच तुसी सानू अपने खास खास मैसेजेस जिहड़े ने उह सानू अपनी वॉइस दे जरिए भेजने ने। मिस्टर बिपन इज वेटिंग कि कदों तुसी अपने प्यारे प्यारे, बट जनाब कुछ वखरा होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, कुछ पुरानी याद होनी चाहिए, कुछ ऐसी इंसीडेंट, कुछ ऐसी चीज़ जिहने शायद तुहाडी लाइफ जिहड़ी है उह चेंज कर दित्ती है। क्योंकि 90 साल फील्ड विच रहना, 90 साल स्टिल रेलीवेंट रहना, जनाब बहुत बड़ा वर्ड है रेलीवेंट। किन्ने लोग आए, किन्ने लोग चले गए, किन्ना कुछ चला गया, पर आकाशवाणी उत्थे दो उत्थे लोगों के नाल जुड़िया होया। बहुजन हिताए बहुजन सुखाए। सो हुण इंजॉय करते हैं प्रोग्राम अड्डी टप्पा, जिथे तुहाडी अड्डी जिहड़ी है वह थले नहीं लगेगी, यानी कि बार बार वजेगी थले, बार बार फिर हवा च जाएगी, क्योंकि गाने ही कुछ इस तरह के होणगे। हाँ जी इंजॉय करो FM Rainbow यानी कि 2.7 MHz।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है, पर सानू 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर दे सरोते भी सुन पा रहे ने जी। और इस वेले तुहाडा अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है जी दिल अपना पंजाबी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। वो प्रोग्राम जिस दे विच तुसी सानू WhatsApp दे जरिए रोज़ कोई ना कोई नवे टॉपिक दे उपर जानकारी सांझी करदे हो, पर अज दा खास दिन है जी। 90 वरे पूरे हो चुके ने आकाशवाणी दे सफर दे, सो 90 वरिया नू समर्पित तुहाडियां जिहड़ियां यादां ने, तुहाडा कोई खास टैलेंट है, कोई हुनर है, जो तुहाडियां ओल्ड मैमरीज ने, जां कोई खास इन्फॉर्मेशन है जो रेडियो दे नाल तुहाडी जुड़ी हुई है, जां कोई एक जोक हो सकदा तुहाडी जिंदगी दा, जां कोई अजिहा एक किस्सा हो सकदा पंजाबी कल्चर दे नाल जुड़ी हुई जानकारी जिहड़ी है, वह तुसीं साडे नाल अज दे इस प्रोग्राम च शेयर कर सकदे हो। कोशिश करियो दोस्तों, क्योंकि अज खास दिन है, सिर्फ ते सिर्फ जिहड़े हैलो हाई या गुड मॉर्निंग जां उस दे जिहड़े टैक्सट मैसेजेस जां इमेजेस हुंदियां ने, उह अज अगर आपां थोड़ियां जिहियां अवॉइड कर लईए तां ज़्यादा बैटर होगा जी। और ज़्यादा लंबे मैसेज अगर असी गल करिए ना हूँ, ताकि सारे दोस्तों के मैसेज अज दे इस प्रोग्राम दे विच शामिल कर सकी, तां दोस्तों अगे गुजारिश रहेगी। और नंबर असी दस दें जिहड़े दोस्तों ने नहीं पता, वैसे तो मैं लगता सारे दोस्तों जानकारी है जी कि किस नंबर के उपर आप मैसेज भेजना है। साडा WhatsApp नंबर है जी 9855 10 10 27, यानी कि 9855 10 10 27।

27। सो इन्हां दे उपर तुसीं सानूं जिहड़ा है ओह अज दे इस खास दिन नूं लै के, यानी कि आकाशवाणी दे 90 वरे पूरे होण जा रहे ने, या 90 वरे दे इस खुशी दे अवसर दे विच जो अज वॉकाथॉन भी आयोजित करवाई गई, उस दे नाल संबंधित या तुहाडियां रेडियो दे नाल जो यादां ने, जो ओल्ड मैमरीज़ ने, इनफॉर्मेशन है, कोई जोक है, तां ओह चीज़ां तुसीं साडे नाल अज दे इस प्रोग्राम दे विच सांझे कर सकोगे, और नाल दी नाल गल्लां दे नाल नाल गीतां दे जरिए भी जिहड़ा है तुहानूं एंटरटेन कीता जाएगा। सो बिना किसी देरी तो आओ जी उड़ीकदे हां, उन्नी देर तक प्ले करदे हां साडा अज दा पहला ट्रैक रोशन प्रिंस ते जस्सी गिल दी आवाज़ दे विच, ते इस गीत दे उस पार होणगियां साडे पहले लिसनर्स दी आवाज़ां रिकॉर्डड फॉर्म दे विच रेडियो दे सैट ते।

0: बधाई।
1: बधाई तनोजी सुखदेव सिंह लखन पाओ
0: क्या बात है
1: दिल
0: जी,
1: अपना
0: पंजाबी
1: पंजाबी।
0: दिल अपना पंजाबी दे वेचे। सुखबीर जी ने एक रिक्वेस्ट की सी सारे दोस्तों के कि अगर गा के थोड़ा जो हो जाए जी तो माहौल जड़ा है होर खूबसूरत हो जाता है। तो बस उसे ही माहौल नू उन्होंने ने हवा दे दी है जी। हुण देखते हैं जी कि अगले दोस्त भी की इसे तरीके की हाजिरी लगवा रहे हैं। आओ सुनते हैं।
1: आवाज दी दुनिया के दोस्तों सारे नूं आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होने ते लख लख बधाइयां, लख लख मुबारकां जिन्हें कि आकाशवाणी ने सानू जो कुछ दिता वो सानू साडा माँ बाप साडा दोस्त मित्र वो नहीं कोई दे सकिया। सब तो प्यारा दोस्त साडा रेडियो है जिन्हें कि सानू जिंदगी दे ऐसे ऐसे तौर तरीके ऐसिया ऐसिया मुश्किलों चो ऐसे ऐसे रास्तों तो गुजरन दे रस्ते दिखाए ने। मैनू दोस्तों आकाशवाणी दे नाल जुड़े नू ज्यादा तो 30 साल 35 साल हो चुके ने। मैं हमेशा ज्यादातर रेडियो ही सुनदा, वीडियो या ऑडियो मोबाइल ते ये समा मैं बर्बाद नहीं करता। आकाशवाणी दी सब तो बड़ी देन दोस्तों अज मैं थोनू सारे नाल सांझी करन लग्या। मेरा बचपन सी जिहड़ा दादी दे उंगली ला के दादी दे लड़ लग के बीतिया और दादी ने मैनू रोज डेली गुरुद्वारे लैके जाना शुरू तो लैके एंड तक सुख आसन तक गुरु दा करवा के आना और मेरा बचपन गुरबाणी दे दौर ते ही बीतिया। उस तो बाद दवानी दा दौर आया तां चलो वक्त ने अपने अपने समय दे मुताबक करना पिया सारा कुछ। और जब बच्चे जवान हो गए ब्याहे गए तां सब तो बेहतर रोल सी जिहड़ा मेरा आकाशवाणी ने शुरू किया क्योंकि उस तो बाद बंदे नूं सिर्फ रब दे नाम दी जरूरत हुंदी आ।

0: वो ट्यून बजती है। थोड़ी सी मैं आपको वो रेडियो की ट्यून बजा कर सुनाता हूँ, बांसुरी में सुनाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको अच्छी लगेगी तो जरूर बताइएगा। वैसे तो वो क्ले वायलिन में बजी है, आपको पता ही है
1: जी
0: सबको,
1: जी जी
0: आपको बताने की वैसे ज्यादा वो जरूरत नहीं, पर मैं बांसुरी में बजाऊंगा और उसके लिए तानपुरे की भी आवश्यकता होती है, पर अभी मेरे पास सिर्फ बांसुरी है, तो सिर्फ बांसुरी में वो ट्यून रेडियो जैसे खुलता है स्टेशन वो सुनाऊंगा। और फिर एक और ट्यून है जो आकाशवाणी जलंधर का ही बहुत प्यारा प्रोग्राम है, खेती बाड़ी, ये दो ट्यून्स मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा।
1: जी
0: तो आज का बहुत शुभ अवसर है, ये शुभ मौका है, खुशी का दिन है, और सबको बहुत बहुत ज्यादा बधाई, चढ़दी कला से ये स्टेशन चलता रहे।
1: जी
0: ये पंजाबी विच वैसे मैं बहुत घट बोलदा, पर फिर भी कोशिश कीती है, ते
1: नहीं कमाल बोल दियो जी,
0: रेडियो दे विच में सॉरी बांसुरी दे विच ट्यून सुनांदा हां जेड़ा रेडियो खुलदा है जदों।

ये तो होगी जी रेडियो खोलने की ट्यून। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही प्यारी और प्रसिद्ध ट्यून। अब ये तो मुझे याद नहीं, आपको अगर पता हो तो मुझे जरूर बताइए कि ये बांसुरी किन्होंने बजाई है उस ट्यून में। तो मैं आपको सुनाता हूँ।

0: ऐसी कुछ ट्यून थी। तो आपको फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई।
1: बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। वैसे मेरे ते चलो तुसी वो ओपनिंग अनाउंसमेंट वाली बांसुरी ते ट्यून बजाए ना, मेरे ते लू कंडे खड़े हो गए। मतलब दिमाग तक जिहड़ी है वो धुन जिहड़ी गई है, लगा ही नहीं कि बांसुरी दे नाल भी जिहड़ी वो धुन है उसनू मैच किया जा सकता। बहुत ही बाकमाल ते बहुत ही खूबसूरत अंदाज दे विच तुसी बांसुरी दे नाल जिहड़ियां एक अध्याती प्रोग्राम दी और एक जिहड़ी साडी ओपनिंग अनाउंसमेंट दी धुन हुंदी आ उसनू साडे तक पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अज दे दिन होर भी खास कर दिता तुहाडी बांसुरी ने।
2: हेलो दिल अपना पंजाबी ललित सोनी सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग सारे दोस्तां नूं, प्यार भरी सत श्री अकाल और नमस्कार। अज साडे आरजिस मैडमा ने बहुत रौनक लगाई, जिस तरह की अमन कोहली, पूजा टुहानी भी 10 साल तो जुड़े हुए ने, वरुण कौर जी, इन्हां ने सवेर दी चहकदी चहकदी आवाज दे विच अज 19 वर्षगांठ मनाई आकाशवाणी दी। साडी आकाशवाणी ने सानू बहुत कुछ दिता है, बड़ा प्रेरित किया है, सारे स्रोतावां ने भी बड़ा सोहना योगदान दिंदे हन। आकाशवाणी आसम रेंबो तो ही मैं पंजाबी बोलनी सीखी है, लिखनी तो मैनू हले भी नहीं आती, ते मैं इसका दिलो स्वागत करती हाँ, जेड़े सारा दिन मैनू अपने नाल जोड़ के, दिल आज शायर है, दिल चाहता है दे विच जोड़ के, पंजाबी तड़के विच जोड़ के सारा दिन दिल लगाई रखते हैं। फिर तो सारे दोस्तों नू, सारे आरजिस नू आकाशवाणी दे 90 वर्षगांठ दिया हार्दिक शुभकामनावां। मैं तुहाडी अपनी किरण नरुला, ग्रीन पार्क कपूरथला।
1: किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया। और तुसी दस्या कि पंजाबी तुसी रेडियो तो ही सीखी है, तो क्या बात है, मतलब कि रेडियो दा हर एक दी जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ अहम रोल जरूर रहा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी, और इसे तरीके दे नाल साडे नाल जुड़े रहने वास्ते।
3: दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम पेश कर रहे आरजे साहब जी नूं इकबाल सिंह, मेन बाजार अठूर, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना दी बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी मिठी मिठी ते ठंडी ठंडी जी साहब ते श्री अकाल जी। बस चितो पैर आकाश बाणी दा ख्याल जिहा रहिंदा, बस चितो पैर आकाश बाणी दा ख्याल जिहा रहिंदा, रेडियो सदा अखियां दे सामने रहिंदा, आकाश बाणी दी याद दवाउंदा रहिंदा हर साह भी, बस रेडियो

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

प्रोग्राम तो इंजॉय कर रही हूँ, गीत बहार अपनी दोस्त होस्ट आरजे रिया दे नाल ते आज सेलिब्रेट कर रहे हैं असी आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो दे 90 साल। 90 सालों के सफर विच ना सानू एक चीज़ तो समझ आ गई है कि जिहड़ा रेडियो है ना, ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। हाँ, मनोरंजन असी तुहाडा करते हैं तो सानू बड़ा अच्छा लगता है तुहाडे नाल गल्लां बातां मार के। अपनी असी ना वेट करते हैं कि कदों असी रेडियो ते आईए ते तुहाडी गल्लां बातां तुहाडे नाल गल्लां बातां करिए, तुहाडियां सुनिए, कुछ अपनियां सुनाइए। तो एक चीज़ जो समझ आई है ना इस समय दे विच, ये है कि रेडियो मनोरंजन का साधन तो है ही है, पर नाल ही नाल एक दोस्त हुंदा है ना जिहड़ा मुश्किल समय दे विच तुहाडा साथ दिंदा है। रेडियो वो दोस्त भी है, क्योंकि भावें जंग होवे, बरसात होवे, लॉकडाउन होवे, कुछ भी होवे, रेडियो की आवाज़ हमेशा लोगों तक पहुँची है, लोगों को हौसला दिता है, लोगों को उस मुश्किल समय में की करना चाहिए वह भी उन्होंने मतलब रेडियो ने दस्या है। रेडियो ने पिंड नू शहर नाल जोड़िया, किसानों नू मंडी नाल जोड़िया, विद्यार्थियों नू सिख्या दे नाल जोड़िया है, तो ऑल इन ऑल सानू तुहाडे दिलां नाल जोड़िया है। सो रेडियो का जिन्ना शुक्रगुजार करिए उन्ना ही घट है। तो इस करके असी रेडियो का जिहड़ा बर्थडे है बहुत ही धूमधाम नाल सैलीब्रेट कर रहे हैं। मैं तो इतने पूरा डांस कर रही हूँ, असी डीजे मतलब बने डीजे वाली फील लै रही हूँ, एंड आई रियली होप कि तुसी भी इंजॉय कर रहे होंगे आकाशवाणी के 90 साल।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: हाँ जी, प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी तड़का अपनी दोस्त ते होस्ट आरजे रिया दे नाल। साडे नाल साडे अगले जिहड़े कॉलर ने जुड़ गए ने। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं संदीप सिंह अमृतसर से। हाँ
0: संदीप जी, बड़ा स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
1: जी,
0: ते
1: तुहाडा भी।
0: की हाल चाल ने, की कर रहे हो,
1: बस कम लगे नाल रेडियो सुन रहे।
0: कहड़े काम लगे हो सवेरे सवेरे, कहड़े काम लगे हो? पर सवेरे ते नहीं है, चलो 11:30 बज गए, पर फिर भी
1: हाँ जी,
0: मैं क्या
1: चुनिया रंग गई।
0: चुनिया तुसी? अच्छा, ओके जी, तुसी मतलब ओ ठीक है ठीक है। उन्हां नू चुनिया रंगन वाले नू की कहंदे आ, ललारी कहंदे आ ना?
1: ललारी। हाँ जी,
0: हाँ, वो
1: ललारी।
0: तुसी ललारी हो। वाह जी वाह, ललारी दे ते मतलब गाने भी बड़े ने,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: है ना? तुसी मैनू पहले दस दे, आपां ललारी दा कोई गाना चला दिए नहीं ते अज तुहाडे ते?
1: चला था कोई नहीं।
0: चलो कोई नहीं, जो वेखदे हां मेरे कोल होया तो मैं जरूर चला देंगी। ते गल दसो संदीप जी, रेडियो सुनदे नू किन्ना टाइम हो गया तुहानू?
1: रेडियो काफी देर सुन रहे हैं।
0: काफ़ी देर तो सुन रहे हो, तो फिर रेडियो दे नाल कोई याद जुड़ी होवे, कोई कुछ किस्सा कहानी तुसी साडे नाल सांझी करना होवे?
1: याद तो कोई नहीं इस टाइम, पर
0: याद कोई नहीं इस टाइम? अच्छा
1: फोन में ऐसे साल तो लगाना शुरू किया है।
0: जी, ते कल मदर्स डे भी है, तो तुसी अपनी माँ नू कुछ कहना चाहो?
1: मानो यही कहना चाहेंगे, उम्र लंबी होवे।
0: होर कुछ नहीं कहना चाहोगे?

0: चलो संदीप जी, गाना तुसी दस दो, केड़ा सुनना है?
1: गाना कोई भी सुना दो। हाँ
0: कोई भी सुना दिए?
1: जी
0: चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, धन्यवाद जी। सो संदीप जी ललारी सी तो मैं उन्होंने ललारी वाला ही गाना लभ रही हूँ, तो ललारी वाला गाना लभ गया तो उन्होंने ललारी वाला गाना ही असं चला रहे हैं।

0: વાણી આકાશવાણી
1: वेल बिल्कुल वापस है आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर अपने दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। सवाल पूछ चुके हूँ मैं आपसे बलवाने के लिए आपको बॉलीवुड सरताज और बहुत सारे जवाब भी आ रहे हैं। 9868107070 नंबर है हमारा। और सवाल बड़ा आसान था कि शिवाजी छत्रपति के जो बड़े बेटे हैं वो कौन है और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। एनीवेज चलिए कुछ और बात कर लेते हैं भाई। टॉप बॉलीवुड ग्रॉसर्स ज़रूर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मूवीज है जिन्होंने बहुत बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर कमाई की है। तो धुरंधर द रिवेंज तो है ही, बॉर्डर 2 भी पीछे नहीं रही और भूत बंगला की 234 करोड़ की अब तक कमाई हो चुकी है। रोमियो भी 118 करोड़ कमा चुकी है और राजा शिवाजी 50 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और अंदाजा है कि इससे कहीं ऊपर चली जाएगी। वेल, आजकल टॉक ऑफ द टाउन कौन है? रणवीर सिंह। जी हाँ, रणवीर सिंह बन चुके हैं न्यू बॉक्स ऑफिस किंग और प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनको बड़ी बड़ी मूवीज में लेने के लिए। मिड बजट रोमांटिक फिल्म्स स्ट्रगल कर रही हैं थिएटर्स पर और इसी के साथ ही ओटीटी सक्सेस बहुत हेल्प कर रहा है जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं उन सभी के लिए। और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड देखने को मिल रहा है एंड द ट्रेंडिंग स्टार्स आर रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी एंड रितेश देशमुख। वेल, बॉलीवुड की और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ और बॉलीवुड सरताज के साथ बिल्कुल वापस आऊंगी मैं आप सभी के लिए। अभी नेहा कक्कड़ की वॉइस में वन ऑफ माई वेरी फेवरेट नच दी।

0: सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वेल जी, समय हो चला है आप सभी को बताने का कि कौन है आज का बॉलीवुड सरताज। तो आज के बॉलीवुड सरताज बनते हैं आप सभी, क्योंकि भाई आज थोड़े टाइम के पाबंदी की वजह से किसी से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन बॉलीवुड सरताज आप सभी हैं। बसंत तोमर जी, आपसे बात हुई थी एंड आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। साथ ही पंकज हैं अमरावती से, जिन्होंने सही जवाब देकर बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और सलीम मलिक मेरठ से, साथ ही प्रवीण चौहान, इन्होंने सही जवाब दिया है। और सांभाजी राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से, ये सभी हमारे बनते हैं बॉलीवुड सरताज। और सही मायने में आप जब हमसे जुड़ते हैं दिल से दिल का रिश्ता बना के, तो डेफिनेटली हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एफएम रेनबो सांभाजी, ये शाजी भोसले उमेश कुमार खयाला से इन्होंने हमें मैसेज किया है। मोहम्मद इम्तियाज साहब, आप भी बनते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और साथ ही ऋषु कटारिया, पवन कटारिया पंजाब से, और इन्होंने सही जवाब दिया है कि सांभाजी महाराज ये शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे और जिनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वेल एनीवेज, एंड अब समय हो चला है कि हम आगे बढ़े अपने बॉलीवुड के गॉसिप्स को लेकर। और बॉलीवुड गॉसिप्स में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए, बहुत सारी उठा पटक है और बहुत सारी न्यू रिलीजेस है जो अभी आने वाली है। कह रहे हैं कि भाई सलमान खान भी दस्तक देने वाले हैं बहुत जल्द अपनी फिल्म को लेकर, और उनकी फिल्म के बहुत सारे कयास लगा जा रहे हैं। मातृभूमि शायद इसको लेकर वो बहुत जल्द ओटीटी पर आने वाले हैं। एंड इसी के साथ ही रणवीर सिंह, जैसे कि हमने आपको बताया कि सभी प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनके साथ काम करें। और बड़े दुख की बात है कि बड़ी सारी रूमर्स भी फैल रही है भाई हमारे शक्ति कपूर साहब, परमात्मा उनकी उम्र को लंबा करे। और कैसे एक न्यूज़ फैल गई उनके ना रहने की, जो कि बहुत बुरी बात है। जब तक आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर ना हो, प्लीज़ किसी के लिए इस तरह के बातें मत कहिए। और खुद सोचिए, आप वो भी इंसान है, उनकी फैमिलीज है, उनको कैसा लगता होगा जब इस तरह की चीजें आती है। वेल एनीवेज, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी दिल से दिल तक। इसके बाद लाइंड अप प्रोग्राम्स है आप सभी के लिए, जिसको आप एंजॉय करेंगे। फिलहाल मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मस्ती की पाठशाला आप सभी के लिए रहेगी चक द इंडिया से नरेश कुमार की वॉइस पे। एंजॉय कीजिए।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਜਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਜੋ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਡਰੋਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.7 एफ एम रेनबो तिथि इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज अपनी दोस्त होस्ट आजरिया दे नाल। ते मिड डे मेलोडीज दे विच यार वन ऑफ माई फेवरेट प्रोग्राम्स क्योंकि पुराने गाने मेरे दिल के बहुत करीब ने एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी पुराने गाने सुनते हैं जिन्होंने आदत है ना पुराने गाने सुनने की वो एक दिन भी पुराने गाने पुराने बॉलीवुड गाने सुने बिना नहीं रह सकते। सो ये प्रोग्राम की असी थोड़े लिए ही लेके आए कि तुम अपने फेवरेट जो पुराने बॉलीवुड गाने ने उनका जोड़ा गोल्डन पीरियड है उन्होंने इंजॉय कर सको। तो आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का किशोर कुमार से लता मंगेशकर उन्होंने आवाज़ बहुत ही प्यारे जे गीत के।

एहसान तेरा होगा मुझ पर। यार लिरिक्स भी इन्ने सोहणे ने गाने दे, उन्हां दे म्यूजिक भी इन्ना बा कमाल है, ते मोहम्मद रफ़ी उन्हां दी आवाज़ ते चलो उमदा है ही, उहदा ते कोई चलो पैरेलल्स ही नहीं है। ते अगला गाना जिहड़ा हैगा उह भी उहदे भी कोई पैरेलल्स नहीं हैगे, उन्हां दे जिहड़े सिंगर ने उन्हां दे भी कोई पैरेलल्स, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई उन्हां दे लागे बन्ने नहीं खड़ सकदा। उन्हां दी आवाज़ इन्नी सोहणी है ते गाना उत्तों भी ज़्यादा। बहुत ही प्यारा गाना तुहाडे लई पेश कर रही हां।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हाँ जी, जो तुहाडे भी कोई सामने वाली खिड़की ते कोई चंद दा टुकड़ा रह रहा है, ते तुसी वेट कर रहे हो कि कदों तुसी अपने प्यार दी गल, अपने दिल दी गल, अपना इजहार तुसी उन्हां नाल करो। ते असीं उम्मीद करते हैं कि तुसी जल्दी जल्दी उन्हां नूं इजहार करो, ते फिर तुसी मुकेश होरां दा आ वाला गाना गाओ।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

लगी हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

ना सुरदी पाबंदी, ना सुरदी पाबंदी, ना लफ्जां दा हिसाब होवे। अज दी शाम बस दिलां दी किताब होवे। कोई हस के सुनावेगा ते कोई चुप के रुवावेगा। हर शायर दा अंदाज अज लाजवाब होवे। सो महफिल सज चुकी है ते तुहाडी दोस्त भी तैयार है। स्वागत करो उस शाम दा जिथे दिल आज शायर है। जी हाँ, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, तुहानू सारिआं नू बहुत ही प्यार भरा स्वागत है तुहाडा सारिआं दा इस प्रोग्राम दे विच जिसदा नाम है दिल आज शायर है। ते तुहाडी दोस्त वंदना इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल बन चुकी है ते असी इंजॉय करांगे इस प्रोग्राम नू, नाल नाल सुणांगे शेरो शायरी तुहाडे दिलां दे।

हां जी, एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच। मैसेज मैनू बहुत सोहने सोहने जिहड़े ने उह आ रहे ने साडे लिसनर्स दे, ते बहुत वधिया लगदा है। इहदा मतलब है कि इन्ने सारे लोग जिहड़े ने उह साडे नाल इस टाइम जुड़े होए ने, जिन्हां ने बहुत सोहने सोहने मैसेज सानू भेजे ने। एक मैसेज आया जी, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के तो देख, प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें। जी हाँ, ये मैसेज जड़ा है भी जय जी राम स्वरूप अरोड़ा जी ने, चौंक चेलियां सुल्तानपुर लोधी तो। बहुत बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत जहा मैसेज भेजन लिए राम स्वरूप जी। इस तो बाद विच अगला मैसेज आया जी, लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी का, ना छेड़ किस्सा पुरानिया गल्लां दा, दुख भरी मेरी कहानी दा, बिना कसूर दी सज़ा मिली, इत्थे सब अपने दी ही मेहरबानी है, इत्थे सब अपने दी ही मेहरबानी है। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच अपना मैसेज जड़ा है शामिल करवाउण लई, बहुत वधिया लग्या मैसेज पढ़ के जी। इस तो बाद दे विच कुछ होर मैसेज भी ने, मैं जरूर इस प्रोग्राम दे विच शामिल करना चाहवांगी। और बहुत वधिया लग रहा तुहाडे मैसेजेस जड़े ने पढ़ पढ़ के, किन्ने सारे मैसेज जड़े ने आ रहे ने। ते कहिंदे तुम्हारी बातें सिर्फ बातें नहीं, तुम्हारी बातें सिर्फ बातें नहीं, मेरे दिल का करार है, तुमसे ही है सुकून मन का, तुम्हारे बिना रातें मेरी बेकरार हैं। ये मैसेज है जी बलविंदर सरां पिंड मोरजंड सिंगा हनुमानगढ़ तो। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजने लिए। तो प्रोग्राम दे विच असीं होर भी मैसेज इसे तरीके दे नाल तुहाडे भेजे हुए शामिल करांगे, पर फिलहाल वक्त है एक सोहने जे गाने नूं, सोहने जे ट्रैक नूं सुनन दा। ते एमी विरक दी आवाज़ दे विच इस खूबसूरत जे ट्रैक नूं तुसीं मेरे नाल इंजॉय करो। ते आओ जी फटाफट तो वापस ते पढ़ांगे जी तुहाडे होर सुनेहे जिहड़े तुसीं भेजे ने सानूं।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हाँ जी, प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच एक वारी फिर तो तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। ते एक मैसेज आया जी, FM रेनबो जलंधर हमेशा ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश करदा रहा है ते प्रोग्राम नू हमेशा खूबसूरत बनांदे ने जी आरजीज़। ते एक वारी फिर सारे आर

मुझे एक ऐसी शाम चाहिए, मुझे एक ऐसी शाम चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे नाम चाहिए। बताऊं तुम्हें हाले दिल गले लगाकर, बताऊं तुम्हें हाले दिल गले लगाकर, मुझे वो आराम चाहिए। प्रोग्राम चल रहा है जी, दिलाज शायर है ते तुसी बने हो मेरे नाल, यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल, ते इंजॉय कर रहे हो नाल नाल खूबसूरत जे मैसेजेस अपने भेजे हुए, ते उदे नाल ही असी प्ले कर रहे हैं जी सोहणे सोहणे जे गीत प्रोग्राम दे विच, उस शेरो शायरी वो दिलां दे जज्बातां नूं जड़े ना होर ज़्यादा लफ्ज़ देने वास्ते इस प्रोग्राम दे विच। एंड आई होप कि तुहानूं सारयां नूं ये गीत जड़े ने पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जड़ी यादां हुंदियां ने ना, वो यादां जड़ियां ने वो उन्हां दे विच जड़े गीत भी हुंदे ने, जड़ा म्यूजिक भी हुंदा ना, वो पुराना जड़ा हुंदा ना उहदे विच जड़ा एक अहसास पुराने गीतां दा, क्योंकि जो चीज़ असी दिलों महसूस करते हाँ, कहते ना ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, तो बस फिर वो एहसास का जो मुकाबला ना वो नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि ये गाने जड़े वो नाल जड़े एहसास ने उन्होंने होर ज़्यादा जड़ा ना महसूस करा रहे होंगे। तो उम्मीद है कि तुहानू उम्मीद मतलब मेरी उम्मीद है कि तुहानू प्रोग्राम नाल नाल जिस तरह मैं इंजॉय कर रही हाँ उस तरीके दे नाल तुसी भी इंजॉय कर रहे हो। अज सैटरडे है वैसे भी, और वीकेंड है, और दिन जड़ा हुंदा है ना सैटरडे दा वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग डे हुंदा है बाकी दिनों दे मुकाबले, क्योंकि अगले दिन संडे हुंदा है। ते इंजॉय करदे हाँ प्रोग्राम नूं जिस दा नाम दिलाज शायर है, तुहाडे सोहणे सोहणे जे मैसेजेस दे नाल। एक स्नेहा और आया है, कहिंदे ये यादें भी बड़ी अजीब होती हैं, ये यादें भी बड़ी अजीब होती हैं, कभी हमको रुलाती हैं, कभी हमको हंसाती हैं, कभी दे जाती हैं सुकून तो कभी दिल को तड़पाती हैं। यादें भी बड़ी अजीब, न जाने कैसे दिन दिखाती हैं। बहुत सोहना जिहा मैसेज आया जी, ये मैसेज आया सोनू मलेरकोटला वालों, उन्होंने ये मैसेज जड़ा है वो भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी प्रोग्राम दे विच अपना मैसेज शामिल कराने वास्ते। अगला मैसेज है जी, FM आकाशवाणी दिलाज शायर है, गुड आफ्टरनून मैम जी। 90 साल का सफ़र आवाज़ों का कारवां बना, हर मौसम में देश के दिल का आसमां बना, गीत गज़ल खबरों से रिश्ता यूं निभाया है, आकाशवाणी ने हर घर में प्यार जगाया है। किरण नरूला ग्रीन पार्क कपूरथला तो, बहुत ही सोहना जिहा मैसेज किरण जी, तुहाडे वल्लों बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज वास्ते, बहुत वधिया लग्या तुसी इन्ना सोहना जिहा मैसेज जिहड़ा ओ लिख के भेजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक होर मैसेज आया है, तो मैसेज वास्ते जी बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है, पर मैं कोशिश करांगी कि कुछ लाइन्स जड़ियां ने इस प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करां तुहाडे भेजे हुए स्नेहे दियां। तो ये मैसेज है जी भुपिंदर सिंह पिंड चीचा अमृतसर तो, कहिंदे हुण तू आपे दस मैं तेरे लिए की नहीं करदा,

हर रात एक नाम याद आता है, हर रात एक नाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है। सोचता हूँ कर लूँ दूसरी मोहब्बत, सोचता हूँ कर लूँ दूसरी मोहब्बत, लेकिन फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। ये खूबसूरत जी लाइना मिर्जा गालिब जी दियाँ लिखी हुई। अच्छा, तुहाडे चों पता नहीं किन्नियां नूं पता होएगा कि कल मदर्स डे है, माँ दा दिन। पर माँ दा वैसे कोई दिन नहीं हुंदा, माँ दा दिन तां हर दिन हुंदा है, क्योंकि जिंदगी माँ तो बिना जड़ी है ना वो अधूरी है। क्योंकि दुनिया में एक माँ ही है जड़ी हर एक तरीके दे नाल अपने बच्चे नूं जड़ा है वो हर एक जगह जड़ी भर सकती है, मतलब अपने बच्चे नूं कमी नहीं महसूस होन दे सकती किसी विधि भी, चाहे माँ बाप भैन भरा किसी भी चीज़ की कमी। परमात्मा ने माँ नूं एक इदां दी बख्शिश नाल नवाजिया है। जी हाँ, तो इदां ही किसी ने एक बहुत सोहना जिहा मैसेज भेजा, और किन्हां ने भेजा मैं तुहानूं जरूर दसांगी। मैसेज है जी, मेरी जिंदगी कदों की मुक जाती जे मेरी माँ मेरे कोल ना हुंदी, मेरी हिम्मत कदों दी टुट जांदी जे मेरी माँ मेरे कोल ना हुंदी। मैं माड़े हालातों दे विच रुल जांदी जे मेरी माँ मेरे कोल ना हुंदी, मैं धरती ते वसदे स्वर्ग नूं भुल जांदी जे मेरी माँ मेरे कोल ना हुंदी। बहुत ही खूबसूरत जिहा मैसेज, ये मैसेज आया जी गगनप्रीत कौर टांडा तो, बहुत बहुत शुक्रिया जी इस सोहने जे मौके दे उत्ते इस सोहना जिहा मैसेज जड़ा है भेजन वास्ते, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा।

0: कॉल इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का जो रेडियो डॉक्टर से जुड़ते हैं, अपनी समस्याएं यहां हमारे रेडियो डॉक्टर के सामने रखते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होकर आप हमें फीडबैक देते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कितना पसंद आता है। तो आज एक नया अंक है, एक ऐसी समस्या है जिससे हम थोड़ा बहुत डरते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम है। और स्पाइन की प्रॉब्लम से या मेरा ये है कि किसी भी समस्या से नहीं डरना है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपके साथ है और जब तक रेडियो डॉक्टर आपके साथ है, आपका एक स्पेशलिस्ट यहां पर डेली रहेगा, ओपीडी खुलेगी और आपकी समस्याएं यहां सुनी जाएंगी। और सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, उसका एक जवाब, सही जवाब आप तक पहुंचेगा। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि आपका साथ हमें मिले इस कार्यक्रम में, जैसे आप रोज हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आज भी करें, क्योंकि आज के हमारे स्पेशलिस्ट बहुत खास हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर HS छाबड़ा। आप एक बहुत ही सीनियर जाने माने स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। आप डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। साथ ही साथ आप प्रेजिडेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी में, चेयरमैन हैं स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन में। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर छाबड़ा, आप स्टूडियो में आए हैं समय निकालकर। नमस्कार।
1: धन्यवाद शालिनी जी, नमस्कार और सारे श्रोताओं को प्यार भरी नमस्कार।
0: बहुत समय बाद डॉक्टर साहब यहाँ आप आए हैं। काफी बार मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट कर चुकी थी, लेकिन हमें पता है सर आप सर्विस पर हैं और पूरी तरह से आप डिवोटेड हैं अपने पेशेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे उन तमाम श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनको भी थोड़ा सा लाभ पहुंच पाए। तो आज आप आए हैं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चाहेंगे कि एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन पर आप जानकारी दें हमारे श्रोताओं को। और चैनल भी वही है आपका पसंदीदा FM रेनबो, और ऐप भी वही है प्रसार भारती का ऐप न्यूज ऑन AIR। तो आप भी वही, मैं भी वही, बस हमारा रेडियो डॉक्टर जो है वो आज खास है। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्पाइन है हमारी, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की डिफॉर्मिटीज या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें या आ सकती हैं?
1: पहले तो बता दूं कि स्पाइन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए। ना खाली शरीर का एक ढांचा बनाती है, बट इसमें स्पाइनल कॉर्ड एक सुरक्षित रूप में सुरंग में नीचे आती है ब्रेन से, और इसी से जैसे हमारे हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण और कई ऑटोनॉमिक फंक्शंस इससे हमारे होते हैं, और इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, चाहे स्पाइन की कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है ये कि जानना कि इनसे आसानी से बचा जा सकता है। हाँ, कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम्स के काफी दुष्परिणाम हो सकते हैं, पर बचना बहुत आसान है। और बाय चांस अगर स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अच्छे इलाज से एक साधारण जिंदगी में वापस जरूर आया जा सकता है। तो अब जान ले कारण क्या होते हैं। जो अगर हम देखें तो स्पाइन में हर कुछ है, स्पाइन में हड्डी है, डिस्क है, लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, और हर तरह से इस पे असर हो सकता है। तो सबसे आम कारण स्पाइन की प्रॉब्लम्स के मैकेनिकल कारण होते हैं।

0: जो इंसान पहले चार पैरों पे चलता था, जब दो पैरों पे खड़ा हुआ तो मजबूत मांसपेशियों के बलबूते पे। तो अगर हमारी जिंदगी आसीन जैसे हो गई है आजकल, अगर हम आसीन रखें और अगर हम अपने बैठने, लेटने, खड़े होने, काम करने के पॉस्चर्स ठीक ना रखें, अपनी जीवन शैली अच्छी ना रखें, तो स्पाइन पे सबसे पहले असर होता है क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। और मैकेनिकल प्रॉब्लम सबसे आम प्रॉब्लम्स हैं। बता दूं शालिनी जी की स्पाइन की प्रॉब्लम्स WHO के मुताबिक सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का विश्व भर में। जुकाम के बाद स्पाइन की प्रॉब्लम्स से सबसे ज्यादा लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये इतनी आम बीमारी है और इसको बचाने के लिए अगर हम अच्छी जीवन शैली रखें जिसमें कई जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज हों, प्रॉपर पॉस्चर हो, तो इनसे बचा जा सकता है। तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम स्ट्रेन हो सकता है, बट कई बार डिस्क की डिजेनरेशन हो सकती है और कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कभी कभी हमारी इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे गठिया होता है ना छोटे जोड़ों का, वैसे रीढ़ की हड्डी में भी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है कंडीशन में। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में मेहनत से दर्द बढ़ेगी, आराम से ठीक होंगे, बट अगर आराम करने के बाद दिक्कत बढ़ती है तो हमारा बिल्कुल एक तरह से ये रेड फ्लैग है, हमारा सीधा सस्पिशन जाना चाहिए कि कहीं इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो हमें रूल आउट करना होता है। हड्डियां कमजोर भी हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, विटामिन डी की कमी से भी हड्डी में फर्क पड़ सकता है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्पाइन पे असर हो सकता है।
1: जी, बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी बीमारियां भी हैं, और हड्डी जैसा आपने कहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है और स्पाइन उसका बिल्कुल बैकबोन है हमारी, तो बहुत सारी समस्याएं इससे जुड़ी हो सकती हैं। कॉजेज भी आपने बताए बहुत सारे हो सकते हैं। एक हमारे इस बीच में कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो,
2: हेलो
1: जी,
2: गुड आफ्टरनून मैम।
1: जी गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए।
2: मैम मेरा नाम कुंवर सिंह है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से?
2: मैम दो तीन क्वेश्चन है, जैसे आज स्पाइन का इशू है, स्पाइनल कॉर्ड का है, तो क्या ये स्लिप डिस्क का और सियाटिका का भी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड होता है स्पाइन से? दूसरा मैम, ये जो क्या जो हमारी स्पाइन पर हमारे वेट का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, अगर वेट कम है या ज्यादा है?
1: जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, और डॉक्टर साहब बताएं इनकी जो समस्या।
0: तो हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सियाटिका, जब भी सियाटिक नर्व के जहाँ फैलती है उसमें दर्द हो तो हम उसे सियाटिका कहते हैं, और एक आम कारण है डिस्क प्रोलैप्स, जो कि अगर रीढ़ की हड्डी में नस पे दबाव हो तो उसके कारण सियाटिका होती है। जैसे हमने बताया, इससे भी बचा जा सकता है बट इसका उपचार भी है, अक्सर दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से एक मलम से आराम आ जाता है, ना आराम आए तो इंजेक्शन भी लगते हैं, और 100 में 5 लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जो दबाव है उसको हटाने के लिए, जो डिस्क प्रोलैप्स से होता है। दूसरा आपका
1: वेट का
0: देखिए, कई चीजें हैं जो प्रीडिस्पोज करती हैं कमर के दर्द को। हमने बात की एक आसीन जिंदगी, बट हमने बात की गलत पोस्चर, बट अगर वेट भी ज्यादा हो तो उससे क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शरीर का आगे को शिफ्ट हो जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट होने से रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा जोर आने लगता है, और इससे कमर की कई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ठीक वेट रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छी जीवन शैली रखना। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो मांसपेशी ना खाली फूल जाते हैं बट वो आगे की तरफ पेट बढ़ जाता है, उसी तरह रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, बिल्कुल, तो वो रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा तनाव आता है। उतना ही जरूरी होता है कि एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी खत्म होती है, तो इन मांसपेशियों को दोबारा टोन अप करना एक्सरसाइजेस से, और आमतौर पे भारतवर्ष में ये नहीं किया जाता, तो ये एक जड़ बन जाती है कि आगे चल के कमर की प्रॉब्लम्स का।
1: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है ये, महिलाएं हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं तो वो भी ध्यान रखें इस बात को। और इसका मतलब जो है डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बोन्स को हेल्दी रखना है तो।
0: बिल्कुल, बोन्स को सपोर्ट करने वाले मसल्स को और बोन्स को हेल्दी रखना है तो कहते हैं जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज, जैसे टहलने की आदत, ट्रेडमिल, स्पोर्ट्स, एरोबिक, स्विमिंग, डांस, जॉग रन, इनसे मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं।

0: और बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं, तो इस पे उनके स्ट्रांग होने से रीढ़ की हड्डी पे कम फोर्स जाता है और उससे डिजनरेशन कम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक गीत है जिसका अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत पॉजिटिव उसमें एक संदेश है, तो हम चाहेंगे पहले इस गीत को हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें, क्योंकि कुछ कुछ संदेश जो आप दे रहे थे हाँ मुझे वो ऐसे ही कुछ है, और स्पाइन के जो परेशानियों से जो जूझते हैं पेशेंट्स उनको ये गीत काफी मोटिवेट करता है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो पहले सुन लेते हैं एक गीत।

0: जी हाँ, कर हर मैदान फतेह, और फतेह तो हमें मिलेगी ही जब हम मैदान में उतरेंगे और सही से खेलेंगे और सही तरह से अपना जो डायग्नोसिस है वो कराएंगे कि डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये गीत आपने बिल्कुल सही चलाया, बिल्कुल उपयुक्त है इसके लिए, क्योंकि उम्मीद, संघर्ष और आत्मविश्वास के साथ ही हम स्पाइन की प्रॉब्लम से भी निकल सकते हैं। स्पाइन की प्रॉब्लम जितनी भी जटिल हो, अगर हम प्रेरणा
0: हौसला
1: लेके
0: जी,
1: आगे चलें, हौसला रखें, तो इससे जरूर हम कामयाब होंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब ये गीत सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया जो मैं चाह रही थी आपसे पूछूं। वैसे मेरे एक कॉलर वेट कर रहे हैं कि बहुत जब हम स्पाइन की बात करते हैं थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत हमारे शरीर के सारे भाग जुड़े हुए हैं और हमारा मोशन, हमारी मूवमेंट, सब कुछ इससे कंट्रोल होती है। तो क्या ऐसा भी होता है, बहुत केसेस डिफिकल्ट भी आ जाते हैं क्या इसमें?
1: हाँ, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम होता है जी। मतलब दर्द हल्का भी हो सकता, बट अगर स्पाइन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े और अगर उससे जो स्पाइनल कॉर्ड है जो पीछे रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित आ रही है, या उससे जो नसें निकल रही हैं उस पे असर हो, तो इसके काफी दुष्परिणाम भी हो सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: मतलब इतना कि इंसान जहां पे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उससे नीचे पूरा पैरालाइज हो सकता है। हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण सारा
0: जी
1: खत्म हो सकता है। और अगर ऊपर की चोट हो जैसे गर्दन में, तो सांस भी रुक सकता है। तो ये इसके काफी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो पर हाँ, सही उपचार से इनमें से उभरा भी जा
0: जी
1: सकता
0: और इसीलिए डॉक्टर साहब यहाँ हैं कि अगर कोई ऐसा आप में से

0: जो हमारे श्रोता हैं इस तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल निराश नहीं हुई है। अगर आप सही जगह पर सही इलाज लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो।
0: जी, जी नमस्कार।
1: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी राजेंद्र जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं।
1: 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75 kg के आसपास जो है मेरा वजन है और 48 वर्ष मेरी उम्र है। ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। तो पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी सॉरी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: और डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब, मैं 2005-06 से ना इस प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहा हूँ। क्या है कि मेरे को हिप्स जॉइंट्स हैं, इनमें जो है वो पेन है और स्टिफनेस रहती है और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है। अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो इससे रिलीफ मिलता है। और इन दिनों में जो है विटामिन डी दवा होते है पेन रिलीफ की, और लोशन ऑइंटमेंट और ये टैबलेट ये भी खा रहा हूँ। तो इससे होता है कि मुझे टेम्पररी आराम तो मिल जाता है, परमानेंट आराम जो है नहीं मिल पा रहा। अगर मैं आगे की ओर बैंड हो रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि पीछे की ओर बैंड फोल्ड होता हूँ तो इससे मुझे रिलीफ मिलता है। तो अब मैं ये मुझे कुछ ऐसे महसूस होता है कि जैसे एक पेड़ की डाली होती है ना, वो झुकी होती है नीचे की ओर, पर वो टूट जाए मान लो, पर वो मतलब पेड़ जुड़ी रहती है। तो मुझे कुछ इस किस्म का महसूस होता है, तो प्लीज मार्गदर्शन करें। बड़ी
0: थैंक यू। मैं वही सोच रही थी आपका क्वेश्चन जरा समझ लें। तो जी, तो काफी सारी चीजें हैं डॉक्टर साहब।
2: तो जैसे आपने कहा आप 48 वर्ष के हैं, बट आपको कूल्हे में दर्द होता है, कूल्हे की हड्डी में या पीछे बटक्स में पेन होता है। तो आपने बताया कि एक्सरसाइज से भी ये ठीक होता है, तो ये काफ़ी देर से आपकी समस्या चल रही है। तो हमारा आपको ये सलाह होगी हमारी कि आप किसी एक एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें और मुआयना करवा लें, ताकि वो देख के जड़ पता कर सकें और इस हिसाब से इलाज कर सकें। पर जैसे आपने कहा एक्सरसाइज से आपको आराम मिलता है, तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, कूल्हे की एक्सरसाइज। कई बार ये प्रॉब्लम स्पाइन की भी होती हैं, जो बटक में पेन होता है लगता है कूल्हे में, पर होते स्पाइन से हैं। तो उसको पता करना है कि कहां से आ रही है, उसका उस हिसाब से इलाज करना है। खाली दवाइयां इसका उपचार नहीं है, तो हमें कारण पता करना है। हाँ, पेन मैनेजमेंट करनी है, बट आगे जो फैक्टर्स हैं जो प्रीडिस्पोज कर रहे हैं आपकी दिक्कत को, उसको भी हमें सही तरह से पकड़ना है। तो जरूर एक सलाह मशवरा लें एक डॉक्टर से, ताकि आपकी बीमारी को पकड़ा जा सके और उसका ठीक उपचार किया जा सके।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि कई बार बीमारी कहीं और होती है पर सिम्टम कहीं और उसका पता लगता है, तो डायग्नोस्टिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायग्नोस्टिक्स एक तो रोल प्ले करते ही है, ये आप बताएं, और फिर कैसे आप करते हैं, हाउ डू डिसाइड।
2: तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। वैसे मैं बता दूं कि तकरीबन 80% लोगों में हिस्ट्री से उनको क्या दिक्कत है उनको सुन के ही हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। 10% में एग्जामिनेशन से है ना, तो उनको उनका मुआयना करके हमें पता चल जाता है कि कहाँ दिक्कत है। और इसको सब्सटैंशिएट, इसको पक्का करने के लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, बट उल्टा नहीं होना चाहिए। कई बार लोग आते हैं हमारे पास एमआरआई लेके, हमारे रिश्तेदार को ये तकलीफ है जी एमआरआई में देख लीजिए और बताइए। नहीं, एमआरआई का इलाज नहीं करना हमें, हमें क्या दिक्कत है उसका डायग्नोसिस बना के उसको कोरिलेट करना है हमें डायग्नोस्टिक्स से, और उसका इलाज करना है। अब बहुत सारे जगह हमें जब क्लियर पिक्चर ना हो, जैसे कि हमारे पिछले श्रोतागण थे उनकी दिक्कत थी, तो हमें उनमें इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है देखने के लिए कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो उसके लिए अब बहुत एडवांस डायग्नोस्टिक्स हो गई हैं। आप लोग मतलब जैसे एमआरआई है, एमआरआई भी अब पुराना हो गया, उसमें कई तरह की नई एमआरआई टेक्निक्स आ गई हैं, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, कई नए तरह के एमआरआई जिससे हम एक्सपर्ट्स उनमें से ठीक तरह से बीमारी का पता कर सकते हैं। उसी तरह डायनेमिक एमआरआई भी है, आपको दिक्कत लेट के नहीं है, एमआरआई लेट के हो रहा है, तो कई लोगों में खड़े होके एमआरआई करने में अच्छा, उसका अच्छा पता चलता है तकलीफ का। उसी तरह हमारे एडवांस्ड सीटी स्कैन्स हैं, जिसमें जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो देखना है हमें, तो एंजियोग्राफी कर सकते हैं जब हम ऑपरेशन करते हैं अगर गर्दन का, तो वहां पे बहुत एक सुरक्षा बहुत छोटे से पैसेज से हमें स्क्रू डालना पड़ता है। एक तरफ स्पाइनल कॉर्ड है, एक तरफ वो नस है जो दिमाग को जा रही है, ब्लड सप्लाई करती है, तो उसका पैसेज ठीक है कि नहीं वो भी देखना पड़ता है। तो हमें ऐसे एडवांस

0: सीटी एंजियोग्राम्स होते हैं। उसी तरह ईओएस एक एडवांस्ड रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिससे हम पूरे बॉडी का एक थ्री डायमेंशनल इमेज ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी भी कर सकते हैं, नसों की जांच कर सकते हैं, उसके बारे पता कर सकते हैं। तो कई एडवांस टेक्नोलॉजीज है, बोन डेंसिटी देखने के लिए हम डेक्सा स्कैन से उनके बारे जांच कर सकते हैं। तो हमें पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्ट करना है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर पूरा डायग्नोसिस नहीं बन रहा तो ये इन एडवांस डायग्नोस्टिक से हमें वो डायग्नोसिस को पक्का करना है। और बहुत सारे, अभी तो मैं टाइम की कमी के कारण बता नहीं पाया, बट बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जैसे पेट स्कैन है और बोन स्कैन है, जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम कहाँ मर्ज है उसको हम पक्का कर सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ये बहुत आम हम सुनते हैं कि लोग सबसे पहले एमआरआई कराने पहुंचते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं इसी से पता लगेगा, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि अगर आपको कोई पेन है आप सीधे पहुंच जाए कि एमआरआई कर लो पहले?
0: ये एक तरह से कह सकते हैं मिथ्या है कि आप एमआरआई करा लीजिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एमआरआई का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए हमें, और ठीक है एमआरआई एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, बट ये समझना चाहिए कि उम्र के बदलाव हर किसी में होते हैं। एक अगर 70 साल के इंसान का एमआरआई कराएं तो उसमें बदलाव होंगे ही होंगे, तो हमें देखना है कि उसमें पहले देख के कि क्या बीमारी हो सकती है और उसको क्लिनिकली कोरिलेट करना होता है। तो जनरली एमआरआई हम सजेस्ट करते हैं इंडिया जैसे देश में जहां हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इसको, कि अगर कोई रेड फ्लैग्स हो तो फिर तो एमआरआई जरूरी करना है। रेड फ्लैग्स मतलब खतरे के लक्षण, तो अगर उसके साथ बुखार आ रहा है या जैसे हमने बोला कि रेस्ट करने के बाद दिक्कत हो रही है, लेटे लेटे दिक्कत हो रही है, नाइट पेन हो रहा है, कमजोरी पैरों में बढ़ती जा रही है, मलमूत्र नियंत्रण पे असर हो रहा है, या हिस्ट्री है कैंसर की, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स कहते हैं जिसमें एमआरआई जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर आप ठीक से आपने उपचार किया और आराम नहीं आ रहा, जनरली कहते हैं 6 हफ्ते के लिए, या दिक्कत बहुत ज़्यादा है और उसमें आराम ना आ रहा हो, तो फिर एमआरआई पे जाना चाहिए, नहीं तो हर किसी को एमआरआई में जाने की जरूरत नहीं होती।
1: तो सबसे पहले कोई तकलीफ है तो पहले डॉक्टर के पास जाएं,
0: बिल्कुल
1: खुद डायग्नोस्टिक्स पे या उस पे ना चले जाएं।
0: हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ अगर हल्की है दिक्कत तो आप खुद भी इलाज शुरू कर सकते हैं, बट अगर आराम ना आ रहा हो तो जरूर डॉक्टर से उसका मुआयना जरूर करा लें।
1: ताकि क्या करेंगे इलाज?
0: अब जैसे बताया कि जैसे जुकाम है उतना ही कॉमन कमर का दर्द है ऑलमोस्ट, है ना? हाँ, तो हर जुकाम के लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते नहीं, तो कमर का अगर दर्द है और उसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं है जैसे हमने बात की, तो आप सेक कर सकते हैं, मलम लगा सकते हैं, कुछ जो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हैं जो मतलब मिल जाती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के दर्द के लिए, उनको भी ले सकते हैं। कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के बाद जाके फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। अगर आराम ना आ रहा हो या दिक्कत बढ़ रही हो या रेड फ्लैग्स हैं तो जरूर डॉक्टर के पास जाइए।
1: तो डॉक्टर साहब, कितने दिन ऐसे घरेलू इलाज करके वेट कर सकते हैं? कुछ ऐसा होता है क्या कि 2-4 दिन देखो, हफ्ता देखो, महीना देखो?
0: अक्सर देखा गया है कि ये 2-3 हफ्तों में ये सिम्टम्स अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। अगर बार बार दोबारा नहीं होते तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है।
1: ठीक है, और मैसेजेस भी हमारे पास बहुत आ गए हैं। हेलो आरजे ऑफ आकाशवाणी रेनबो, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, और इसको मोबाइल एप्लीकेशन पे हम सुन रहे हैं। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कुंडली नरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि आसाम से। हमारे श्रोता है हितेंद्र दास, मानस दास, वर्षा दास, शेफाली दास और माधव दास। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मोबाइल ऐप पे आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वो श्रोता जो अभी तक नहीं इसे डाउनलोड कर पाए हैं, आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज ऑन AIR हमारा ऐप है। इसके अलावा जो मैसेज आया है डॉक्टर साहब, कपिल हमें पूछ रहे हैं दुबई से कि क्या B12 का कोई रोल होता है स्पाइन में?
0: हाँ जी, देखिए अगर जैसे पहले श्रोतागण ने पूछा था कि अगर शियाटिका होती है या जैसे हाथ में भी दर्द जाते हैं, तो विटामिन B12 का रोल होता है नर्व ट्रांसमिशन में, और अगर विटामिन B12 की कमी हो तो जो नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में दर्द हो सकता है, तो आपके डॉक्टर साहब एवेल्युएट करेंगे, और अगर आप में उन्हें लगे कि विटामिन B12 की कमी के कारण लक्षण है तो विटामिन B12 जरूर देंगे। और आम तौर से जब भी दर्द जैसे पैरों में या

0: हाथ में फैलता है नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में विटामिन बी12 जरूर होता है क्योंकि इसका रोल है नर्व ट्रांसमिशन में।
1: अच्छा, तो वो ब्लड टेस्ट से हो जाता है?
0: ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है
1: जी। हमारे श्रोता पुनः एक बार जुड़ना चाह रहे हैं, शायद हमारे पुराने श्रोता ही हो जिन्होंने ट्राई किया हो, बात करते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, जी बताइए कौन बोल रहे हैं।
2: हेलो मैम, नमस्ते।
1: जी नमस्कार
2: मैम, मैं प्रशांत शर्मा बोल रहा हूँ मेरठ से।
1: जी बताएं प्रशांत जी।
2: मैडम शुगर की वजह से क्या मेरे स्पाइन में दर्द रहता है? मैडम स्पाइन में दर्द रहता है मेरे।
0: आपकी उम्र कितनी है?
2: सर 44 साल।
0: 44 साल शुगर के कारण 44 साल
2: पे। शुगर पेशेंट हूँ मैं सर।
0: हाँ, बट कब से है आपको डायबिटीज?
2: सर सन 2019 से है सर।
0: 2019 से, तो अभी 7 साल हुए। जब डायबिटीज लंबी रहती है तो उससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, पर आपकी उम्र में 7 साल में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएं कि उससे दर्द हो, चांस थोड़ा कम है। बट ब्लड शुगर से कई बार मसल्स भी थोड़ा वीक होती हैं, बट आप में ज्यादा चांस है कि जो आपका कमर का दर्द है वो मैकेनिकल कारण से है। अगर आपको सुबह उठने में कमर अकड़ी लगती है और चलने फिरने से आराम आता है तो आपको हड्डियां कमजोर या इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स की तरफ देखना है, नहीं तो मैकेनिकल पेन का ही ज्यादा चांस है आप में होने का।
2: जी सर।
1: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमें ये चंद्रपुर नेशनल पार्क तालुका तिमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से लिखने वाले हैं, उनका नाम है कुमार गौरव इंदुरकर। ये लिख रहे हैं सर फाइन हेयर फ्रैक्चर, ये क्या होता है?
0: हेयरलाइन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं ये। हाँ, बहुत सारे लोगों में जो फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी में होता है वो बिल्कुल जैसे आप फ्रैक्चर का सोचते हैं कि हड्डी आपस में सरक गई है, वैसा नहीं होता, बट उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर की तरफ होता है। और बहुत सारों में वो दब जाती है हड्डी, दो फ्रैक्चर के टुकड़े अलग नहीं होते। तो ये मतलब डिपेंड करता है, कई यंग लोगों में भी, जवान लोगों में भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकते हैं चोट के कारण, बट ज़्यादातर देखा जाता है जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियां जब कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो या ऑस्टियोमलेशिया हो, तो उनमें ये हेयरलाइन फ्रैक्चर्स बहुत आम होते हैं। मतलब ज़्यादा ज़ोर से चोट भी लगे, चलते चलते झटका लगा या चलते चलते थोड़ा गिर गए या स्पीड से कार या बस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चली गई और उसी झटके में हड्डी दब जाती है। तो इसमें जरूरी होता है देखना कि हाँ वो जो फ्रैक्चर है वो स्थायी है या अस्थायी है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्योंकि हमने बात की कि पीछे ही सुरंग में नसें आ रही हैं, स्पाइन कॉर्ड आ रही है, तो कहीं उस पर दबाव का चांस तो नहीं है। तो एक एक्सरे करते हैं, डायनेमिक एक्सरे, सामने झुक के और पीछे झुक के, अगर उसमें वो आगे पीछे हड्डी नहीं होती तो वो स्थायी फ्रैक्चर है, स्टेबल फ्रैक्चर है और उसमें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं जितना दर्द अलाउ करे। बट अगर वो अस्थायी है तो उस समय या तो उसको फिक्स कराना चाहिए या बेड रेस्ट करना जब तक वो स्थायी ना हो जाए। और उतना ही जरूरी है कि जो हड्डियां कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसका भी पता चले कि क्यों हड्डियां कमजोर हैं, उसका ठीक से उपचार किया जाए, नहीं तो और हड्डियां ऐसे उनमें फ्रैक्चर हो सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस जो रीढ़ की हड्डी में, उससे कई ऐसे दुष्परिणाम होते हैं जो अल्टीमेटली जिसमें काफी मॉर्बिडिटी होती है।
1: जी जी, हमारे कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो।
3: हेलो नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार।
3: और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
3: जी सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, मेरी एज 44 ईयर्स है सर, और वजन 102 किलो था अभी पिछले दिन पहले, हाइट है जो वो 5'10" या 11" है। तो सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसी तब बैठता हूँ ना कुछ देर के लिए तो दुखना लगती है कमर सर, पेट बहुत आगे निकले हुआ है सर, अब तो घुटने में भी प्रॉब्लम है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर ताकि बैठने वाली दिक्कत ना हो? अब मैं लेटो है आपसे बात कर रहा है, अब मेरी कमर दुख रही है सर नीचे से।
0: तो 44 साल के लिए भी, मतलब अगर आपका, हमने पहले बात की थी, अगर मोटापा हो तो उससे हमारे रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा प्रेशर आता है, तो सब कुछ देखना होगा आप को, आपकी जीवन शैली कैसी है, आपको टहलने की या कोई ऐसे स्पोर्ट्स या कोई ऐसी आदत है कि नहीं, ठीक से बैठते हैं कि नहीं, पोस्चर ठीक रखते हैं कि नहीं, तो आपको मोटापा कम करना पड़ेगा और आपको जीवन शैली में टहलने की या ऐसे कोई जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज की आदत रखनी होगी और बैठने लेटने खड़े होने काम करने का ढंग ठीक रखना होगा। आप 4 से 5 महीने इस पे फोकस कीजिए और ना आराम आए तो जरूर आप

0: किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए, मतलब ज्यादातर चांस है कि आपको ये सब करने से ही आराम आ जाना चाहिए।
1: ठीक है,
2: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। हमारे साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर HS छाबड़ा, डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, और बात कर रहे हैं हम आज एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन पर। आप हैं रेडियो डॉक्टर में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में और आपके साथ हैं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और साथ में हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर एच एस छाबरा। बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं डॉक्टर साहब, फोन लाइन भी कंटिन्यूस बिजी है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे बहुत जरूरी आपको पूछने हैं विषय संबंधित। पहले एक कॉलर को ले लेते हैं, वो लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी जी गौतम साहब, बहुत बहुत स्वागत
2: है। जब हम ऑपरेशन

0: आते हैं तो हमारे जो एनेस्थेटिक जी हैं वो रेड किडनी में इंजेक्शन लगाते हैं, तो मैंने बहुत देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी रेड किडनी में साइड पेन है, और बहुत से लोग तो 10-10 साल से कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, इंजेक्शन लगाया था। तो मेरा पूछना है कि क्या हमारी रेड किडनी कमजोर थी या हमारे एनेस्थेटिक जी की कुछ कमी रही, कृपया विस्तार से बताएं।
1: बहुत कॉमन प्रश्न है ये।
2: हाँ जी हाँ जी, ये आम पूछा जाता है इसके बारे। देखिए ऐसा कि हमने बताया ना कि कमर का दर्द जुकाम के बाद सबसे आम बीमारी है, तो वैसे भी हर किसी में 10 में से 8 लोगों में कमर का दर्द कभी ना कभी तंग करेगा। तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा तो जरूरी नहीं है कि उसी के कारण कमर का दर्द हुआ, और कई बार उसके बाद दर्द इसलिए शुरू होता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद हम अपनी थोड़ी देर के लिए जीवन शैली आसीन कर लेते हैं, हम रेस्ट पे रहते हैं और चलते फिरते नहीं है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। तो अगर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन के कारण दर्द हो तो उसके लक्षण अलग होते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि ये मैकेनिकल कारण है, और इसको अगर आप अपनी जीवन शैली बदलें तो ये दर्द में आराम आना चाहिए। नहीं आराम आए तो ज़रूर एक सलाह मशवरा कर लें किसी डॉक्टर से।
1: जी धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे समस्याओं की बात हो रही है, आपने भी शुरू में बताया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो सकती हैं, और डायग्नोस्टिक्स पर भी हमने बात की, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं या सबके साथ उसी उन्हीं मेडिसिन से आप चलते हैं?
2: नहीं नहीं, वो कारण के हिसाब से इलाज होता है, और अगर प्रिंसिपल्स बोलें स्पाइन की बीमारियों के मैनेजमेंट का, तो प्रिंसिपल यही होता है कि आपने दर्द का तो इलाज करना है, पर उतना ही जरूरी कारण को हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे तो वो दर्द बार बार आता जाएगा, और यही एक कारण है कि क्यों कमर का दर्द एक महामारी की तरह फैला हुआ है, अगर हम वो कारण पे नहीं काम करें। तो उदाहरण के तौर से जैसे कमर का दर्द है क्योंकि जीवन शैली हमारी आसीन है और पोस्चर ठीक नहीं रखते, दर्द से हमने दर्द को दबा लिया पर कारण नहीं हटाया, तो कुछ दिन बाद वो फिर आएगा। तो इसलिए मैनेज द पेन एंड रिमूव द कॉज, उसी बार बार दिक्कत को हटाने के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और भी जो हैं उन पे भी काम करना होता है, जैसे कि अगर मोटापा है तो उस पे काम करना है, अगर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। अब आप बोलेंगे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से कैसे कमर का दर्द का क्या लेना देना, तो अगर दर्द लंबी चलती है तो उससे टेंशन होती है, टेंशन से दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति गिरती है, उससे और दर्द बढ़ती है, उससे और टेंशन होती है, एक विशेष साइकिल हो जाता है और माइंड सेंसिटाइज हो जाता है। तो जब भी लंबी दर्द चलती है, खासतौर से 3 महीने से ज्यादा, अगर हम इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ना देखें तो आराम अच्छा आने का चांस कम हो जाता है।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए कारण को देखना है, जैसे अगर आपको दर्द खाली कमर का है तो उसमें से एक मलम दवाई फिजियोथेरेपी से चल सकती है, बट अगर दर्द पैर में फाल रहा है तो उसके लिए अलग तरह से दवाइयां जैसे प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन वगैरह चलती हैं, अलग थेरेपी साथ में शुरू होती हैं। ना आराम आए तो इंजेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है, छोटे से 100 में 3-4 में ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। उसी तरह अगर दिक्कत, अगर जैसे चोट लगी रीढ़ की हड्डी में और उसके कारण अगर नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया, तो उसमें जो स्पाइन में इंस्टेबिलिटी है उसको हमें दूर करना पड़ता है, ऑपरेशन से उसको फिक्स करना पड़ता है, दबाव हटाना पड़ता है, पर उसके साथ साथ हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से पेशेंट को डालना पड़ता है। कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन मतलब ना खाली शारीरिक रिहैबिलिटेशन बट साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन। मतलब आप सोचिए अगर जवान इंसान में रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया, तो ना खाली उस इंसान पे पर पूरे परिवार पे कितना मानसिक तनाव आता है ना। तो और आम तौर से ये मेन ब्रेड अर्नर्स होते हैं फैमिली के, इन्हीं पे पूरा परिवार चल रहा होता है। तो ना खाली इंसान की साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन करनी होती है पर पूरे परिवार की भी साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन करनी होती है। अगर वो पैरालाइज हो गया बाय चांस तो उसको एक मतलब शारीरिक पुनर्वास से कैसे उसके बावजूद नॉर्मल जिंदगी में आना है, चाहे व्हीलचेयर से, खाली इतना नहीं इसके साथ साथ उसको कैसे एक व्यवसाय में वापस लाना है, कैसे वो समाज में वापस जा पाए। आम तौर से जैसे बाहर सड़क पे व्हीलचेयर चलाना मुश्किल है, बस में जाना मुश्किल है, तो कैसे पूरा समाज में वो एक तरह

0: कम्युनिटी इंक्लूजन हो जाए और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाए, ये सारा स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट का बहुत एक अहम पार्ट होता है।
1: जी।
0: और ऐसे रीढ़ की हड्डी की कई तरह की बीमारियां होती हैं, ट्यूमर भी हो सकता है, उसका इलाज उस हिसाब से, कई बार ट्यूमर निकालना पड़ता है, कई बार उसमें स्पेसिफिक इंजेक्शन से आराम आ जाता है। उसी तरह अगर कोई बचपन से बीमारी है ना, या जैसे डिफॉर्मिटी है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है और टेढ़ी बढ़ती जा रही है, ना खाली देखने में बुरा लगता है बट अगर बचपन से हो तो इससे सांस लेने की क्षमता पे भी असर हो सकता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी और रिब्स ही तो वो चेस्ट कैविटी को बना रहे हैं।
1: कई लोग बहुत झुक के चलते हैं
0: वहाँ, बिल्कुल। तो वो मतलब बहुत तरह की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हैं, सबका इलाज अलग है पर संभव है। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि दो चीजें तो खास तौर से बताना चाहूँगा कि एक तो ज़्यादातर बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव तरीके से किया जा सकता है, आप कह लीजिए 95%।

0: वो मतलब बहुत तरह की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हैं, सबका इलाज अलग है पर संभव है। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि दो चीज़ें तो खास तौर से बताना चाहूँगा कि एक तो ज़्यादातर बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव तरीके से किया जा सकता है, आप कह लीजिए 95% या 97% पेशेंट्स में। पर अगर वो 3 से 5% में हो जिनमें ऑपरेशन की जरूरत हो तो उससे डरना नहीं चाहिए। वो जमाने गए जब रीढ़ की हड्डी की स्पाइन की सर्जरीज सेफ नहीं होती थी, आज एडवांस टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित तरह के सर्जरी करके उनको साधारण जिंदगी में वापस लाया जा सकता है। जब ऑपरेशन का जरूरत हो तो ना करना कहीं ज्यादा हानिकारक हो सकता है ना कि करना, तो उससे डरना नहीं। बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हम स्पाइन सर्जरी के दौरान पूरा स्पाइनल कॉर्ड और नसों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, न्यूरो मॉनिटरिंग कहते हैं इसको, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आ रही हो उसी समय उसका उपचार कर सके। अगर मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से रीढ़ की हड्डी में लोग क्यों डरते हैं कि कहीं स्पाइनल कॉर्ड पे या नस पे
1: जी
0: उसका असर ना आ जाए,
1: जी
0: तो एक तो ये न्यूरो मॉनिटरिंग है बट प्रिसीजन भी आ गया है। आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से आ गया, अब नेविगेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें टेबल पे सीटी स्कैन करके नेविगेशन टेक्नोलॉजी से आप रियल टाइम देख पा रहे हैं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपका स्क्रू अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। और रोबोटिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी से वो रोबो के थ्रू स्क्रू जाता है जिससे और भी सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसी तरह एनेस्थेटिक टेक्निक्स बढ़ गई हैं, बेहतर हो गई हैं। और उसके बाद पूरा जो पुनर्वास जो ऑपरेशन के बाद बहुत जरूरी होता है वो भी इतना एडवांस्ड हो गया, उसमें भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की अगर प्रॉब्लम हो तो इंसान को साधारण जिंदगी में वापस लाया जा सकता है। हाँ, पर यह भी बोलना बहुत जरूरी है कि इसके बारे ज्यादा जागरूकता नहीं है और आपके माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बीमारी बचाना ज्यादा अनिवार्य है ना कि उसका इलाज करना, तो ये रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स में बिल्कुल खरा उतरता है। क्योंकि हमने बात की ना, अगर रीढ़ की हड्डी में चोट से स्पाइनल कॉर्ड पे असर हो जाए तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स दोबारा से जीवित नहीं होते जैसे कि शरीर के बाकी भागों में, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स जीवित नहीं होते। तो इसलिए इन बीमारियों से बचना एक, और ये बहुत आसान है, एक अच्छी जीवन शैली से और कुछ नियमों का पालन, सेफ्टी रूल्स का पालन करने से। जैसे हम में से कितने लोग कार में पीछे बैठ के सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं, ऊंचाई में लोग काम करते हैं सेफ्टी हार्नेस का उपयोग नहीं करते, स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोर्ट्स के नियमों का पालन नहीं करते जिससे चोट लग सकती है,
1: ड्राइव करते हैं हेलमेट नहीं पहनते,
0: बिल्कुल ड्राइव किया पता नहीं पानी कितना गहरा है, नीचे सर लगता है और उसके कारण जिंदगी भर से गर्दन से नीचे पैरालाइज हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बिलबोर्ड पे आपका ध्यान है। सरकार ने अगर ये नियम बनाए हैं तो किसी कारण से बनाए हैं। हमें सीट बेल्ट का उपयोग इसलिए नहीं करना कि ट्रैफिक पुलिसमैन आ गया हमारा चालान हो जाएगा, हमें अपने बचाव के लिए इस सीट बेल्ट
1: समझना
0: का,
1: बहुत
0: हाँ,
1: जरूरी है।
0: वो समझना बहुत
1: डॉक्टर साहब,
0: जरूरी है।
1: आप फॉल की भी बात कर रहे थे, कई बार लोग बच्चे खास तौर पर ऊपर से गिर जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: तो
1: उससे भी
0: मतलब और गिरते हैं तो मतलब भारतवर्ष में तो कई ऐसे अनोखे कारण हैं गिरने के जो बाहर देखने को ही नहीं मिलते, जैसे पेड़ों पर पे चल के मतलब लोग फल तोड़ने के लिए चढ़े, कोकोनट टॉडी टॉपिंग, कोकोनट ट्रीज पे ऊपर चढ़ना,
1: हाइट बहुत है,
0: बिल्कुल, आप उस रात को अपने किसी रिश्तेदार के घर गांव में गए, ऊपर छत पे रात को थोड़ा सेवन किया, सो गए, आधी नींद में उठे और साइड में पैरापेट नहीं थी उसके ऊपर
1: ओह
0: से गिर
1: माय
0: के
1: गॉड।
0: नीचे गिर गए, पतंग के पीछे भाग रहे हैं उससे गिर गए, है ना, बंदर आ गया उससे बचने के लिए बैल्कनी से झुक के सामान ऊपर खींच रहे हैं उनसे गिर गए, कूलर को रिपेयर कर रहे हैं उससे गिर, इन चीजों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ताकि आप एक बार कभी एक स्पाइनल कॉर्ड

0: मार्केट को देखेंगे
1: जी
0: तो आप समझ लेंगे इन चीजों की कितनी अहमियत है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया है बहुत एक इफेक्टिव वे है, और मुझे लगता है बहुत सारे श्रोता ये सुनकर उन पे भी प्रभाव पड़ा होगा जैसे मुझे पड़ रहा है, कि मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता और आप उन चीजों से डील करते हैं, और मैसेजेस और कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन जो आपने अभी बात बताई काफी चीज तो उसमें कवर हो जाती है जो लोग पूछना चाह रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस बाकी रह रहे हैं, जैसे ये बलजिंदर जी लिख रहे हैं दिलशाद गार्डन से, और साथ ही साथ एक और मिलता जुलता मैसेज है रोहिणी से सतीश कुमार जी का, इन दोनों ने ही जानना चाहे कि खान पान का क्या रोल होता है, एक तो ये इन्होंने जानना चाहे, और किस तरह से हम, इन्होंने लिखा है कि खाने में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं जिससे हमारी बैक सही रहे, ये जानना चाहे।
0: ये बहुत ही अहम सवाल है, जैसे कि अच्छी जीवन शैली हमने बताया बहुत जरूरी है, उसी अच्छी जीवन शैली में अच्छा पौष्टिक आहार एक अहम रोल प्ले करता है
1: जी।
0: तो इसलिए खास तौर से जिंदगी में कुछ पीरियड्स होते हैं, जैसे कि बच्चा जब हाइट एकदम अपना बढ़ाता है तो उसको प्रोटीन्स और कैल्शियम की जरूरत है, तो वो आहार में प्रोटीन्स और कैल्शियम रिच डाइट उसको लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी तरह जैसे महिलाएं जब उनका मेनोपॉज होता है, पीरियड्स रुकते हैं, तो उसके बाद उनमें बोन हेल्थ पे असर होने लगता है अगर वो ठीक जीवन शैली ना रखें और अगर खान पान ठीक ना रखें, और ये बताया गया कि नेचुरल वे से अगर हम कैल्शियम और प्रोटीन का आहार ठीक रखें तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। तो अच्छा पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है बोन हेल्थ के लिए और रीढ़ की हड्डी के हेल्थ के लिए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया बचाया जा सकता है। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्कोपीनिया। कहते हैं कि ना खाली बोन्स वीक होती हैं उम्र के साथ, मांसपेशी इतने कमजोर हो जाते हैं, और इसके लिए भी एक्सरसाइज और अच्छा आहार बहुत जरूरी बताया जाता है।
1: जी जी जी, और बहुत सारे मैसेज हैं लेकिन मैं चुन चुनकर और शॉर्ट में ले पा रही हूँ, कुछ लोगों ने बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस भेजे हैं। प्रोमिला या बेदी ने लिखा है, हमें नमस्कार भेजा है, और साथ ही बोला है कि कई बार मालिश बहुत करवाते हैं लोग, खासतौर पर पीठ की और कमर की, तो मैंने इसलिए ये प्रश्न लिया है, और कई बार रोड साइड वालों से करवा लेते हैं या किसी को भी बुला लेते हैं कि मुझे थोड़ा कमर दर्द है जरा मसाज कर दो, कहाँ तक सही है, क्या इसमें नुकसान होता है, और इसमें लिखा है कि कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, तो इस तरह के केसेस आते हैं डॉक्टर साहब?
0: हाँ जी आते हैं। देखिए ऐसा है कि मालिश करवाना शायद गलत नहीं होगा, मसल स्पाज़म को कम करता है, जो जकड़न होती है उसको कम करता है, बट कब करवा रहे हैं, अगर आप में बहुत तेज दर्द है और मालिश किया और अगर जोर से झटका दे, कई लोग पैर पकड़ के खींच देते हैं, तो उससे दिक्कत बढ़ सकती है, तो ये अगर आप करवाएं तो किसी ट्रेंड इंसान से ही करवाएं, एक्सपर्ट से करवाएं। बाहर एक प्रोफेशन होता है कायरोप्रैक्टर्स का, भारतवर्ष में ऐसा कोई ट्रेंड प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए या तो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं या मालिश जो ठीक करता है, बट उनको जरूर बोले कि जोर से झटका नहीं देना हमारे रीढ़ की हड्डी को या शरीर को जिससे हमें दिक्कत आ सके।
1: जी तो ये खुद देखना पड़ेगा,
0: बिल्कुल बताना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, और किससे करवाते हैं वो चुनना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं हम कायरोप्रैक्टर हैं, बट बाहर से कोई डिग्री करके आए हों ऐसे तो बहुत कम लोग हैं, तो आपने देखना है कि उनका उनका बैकग्राउंड कैसा है और फिर करवाएं।
1: जी बिल्कुल, और हमारे श्रोता हैं सतीश जी, इन्होंने कुछ और भी पूछा है साथ में, एक तो इन्होंने ये बोला है कि डॉक्टर साहब 2 साल से इनको प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, मेडिसिन ले रहे हैं पर इनको रिलीफ मिला नहीं है, और आज जो आप बता रहे हैं उससे बहुत कुछ जानकारी हमें मिल रही है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी चाह रहे हैं कि आप कहाँ बैठते हैं, कब मिल सकते हैं, तो बिल्कुल कार्यक्रम खत्म होने वाला है, मैं अभी बताऊंगी कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं। वैसे बता देती हूँ डॉक्टर HS छाबड़ा डॉक्टर साहब का नाम है, आप श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में बैठते हैं और डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन के, तो आप उनसे मिल सकते हैं वहां पर जाकर। सतीश जी इनकी एज है 65 ईयर्स, रोहिणी में रहते हैं। और मैसेज में हमें गीता जी ने भी लिखा है एक मैसेज, और लिख रही हैं कि मुझे बहुत दर्द होता है और इलाज कराने में भी नीचे कमर के नीचे कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है, तो चलिए आप ही डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर अनिल कालरा हमको लिख रहे हैं गुरुग्राम से, वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैसेजेस बहुत हैं, मैं माफी मांगना चाहूंगी कि हम नहीं ले पा रहे हैं सारे प्रश्नों को, पर जो डॉक्टर साहब जैसे आपने टिप्स बताए थे यंगस्टर्स के, तो एक पोस्चर की

0: बात भी आपने बात की थी जो बहुत मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल पोस्चर बहुत बिगड़ रहा है लोगों का, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे लेटना है, वो चीजें बड़ी बिगड़ रही हैं, और खासतौर पर कंप्यूटर को दोष देते हैं, फोन को दोष देते हैं, तो उस तरह के कितने केस आते हैं आपके पास, गर्दन से रिलेटेड आते होंगे?
1: देखिए, कहते हैं कि जब कोविड का पैंडेमिक आया ना,
0: जी जी,
1: तो कमर के दर्द का भी एक पैंडेमिक पूरे विश्व में आ गया। पहले तो एपिडेमिक होता था, वो पैंडेमिक, और वो कारण क्या था, एक तो घर के बीच सीमित हो गए, तो वो एक्सरसाइजेस खत्म हो गई, जीवन शैली असहीन हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, पर पोस्चर पे बहुत असर हुआ। वर्क फ्रॉम होम है, बिस्तर में बैठ के लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, दफ्तर में तो अर्गोनॉमिक्स होते हैं काम करने के, पर घर में कोई होते नहीं है, तो पोस्चर ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर आप रीढ़ की हड्डी को सामने से देखें तो सीधी दिखेगी, साइड से देखें तो गर्दन में आगे की तरफ, पीठ में पीछे की तरफ, कमर में आगे की तरफ कर्व्स होते हैं, इनको लॉर्डोसिस या काइफोसिस कहते हैं। अच्छे पोस्चर में इसको आप मेंटेन करके रखते हैं। अगर आप पोस्चर खराब रखते हैं, जैसे कुर्सी में झुक के बैठे, जैसे कि बिस्तर में झुक के लेट के टीवी देखने, पढ़ने, लैपटॉप का इस्तेमाल करने का आपने किया, या इजी अच्छी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया, तो उससे वो जो कर्व है वो रिवर्स हो जाता है। और जैसे उसी तरह जैसे अगर उंगली को खींच के रखें तो जोड़ में दर्द होगा, तो कमर के दर्द में वैसे ही दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये बचपन से ही बच्चों में, स्कूलों में और घरों में उनको बताना कि पोस्चर ठीक क्यों रखना है और कैसे रखना है वो बहुत जरूरी। एक अच्छी कुर्सी का इस्तेमाल करें, उसमें सीट और बैकरेस्ट का एंगल फिक्स्ड हो 100 से 110 डिग्री, उसमें पूरा पीछे तक बटक्स को पूरा पीछे तक सटा के लेके बैठें, झुक के नहीं बैठें। लंबा बैठना है तो हर 40-50 मिनट में पोस्चर बदल लें। उसी तरह बिस्तर में काम करने की आदत ना रखें, बहुत शौक है तो आजकल डोमेस्टिक बेड्स हो जाते हैं जो हॉस्पिटल के बेड्स की तरह ऊपर हो सकते हैं, ताकि पीठ सीधी रहे, या बैक रेस्ट लगा सकते हैं, है ना। तो उसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं मैट्रेस का क्या रोल है, मतलब किसी को सख्त मैट्रेस सूट करेगा, किसी को नरम, पर वो धसा नहीं होना चाहिए बीच में। फिर कई लोग पूछते हैं तकिया लगाने से दर्द बढ़ता क्या, नहीं, देखो ऐसा है, आप कैसे लेटते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप साइड पे लेटते हैं और तकिया नहीं लेंगे तो गर्दन खींचेगी आपकी, और 8 घंटे अगर गर्दन खींचती रहे तो दर्द तो होगा ही आपको। अगर सीधा लेटते हैं तो पतला तकिया लें, साइड में लेटते हैं तो इतना लें जितना बिस्तर और सिर के डिस्टेंस को पूरा करे, ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे रात को। अगर दोनों सोते हैं तो अपना तकिया बना लें या सर्वाइकल पिलो यूज करें, बीच में पतला और साइड से मोटा हो, ताकि करवट लें तो आप मोटे वाले हिस्से में आ जाएं। अच्छा। तो इसलिए अच्छा पोस्चर और जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस ये बहुत जरूरी है स्पाइन हेल्थ के लिए।
0: जी जी, समय हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है, पर एक बात जो आपने बोली थी कि हमें रिहैबिलिटेट अगर करना है तो बहुत कुछ उन्हें साइको सोशल सपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं जब कोई एक ऐसा पेशेंट होता है जिसको रिहैबिलिटेट आप करते हैं पूरी मेहनत करके, उसको समाज का क्या रोल है उसके प्रति, वो थोड़ा सा बताइए, आप क्या करते हैं लिसनर्स से?
1: देखिए, ऐसा कि बहुत बार हम कभी किसी को व्हीलचेयर पे देखते हैं तो हम उस पे, हमारा होता है रवैया जैसे उस पे तरस खाने का।
0: Exactly, हाँ।
1: इससे उस इंसान पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है।
0: जी।
1: हमें उन पे तरस नहीं खाना, हमें उन्हें एम्पावर करना है कि वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस आ सके, हमें उन्हें सक्षम बनाना है कि वो हमारी तरह एक साधारण जीवन शैली में वापस आ सकें। तभी एक मिनिस्ट्री भी जो पहले जिसका नाम अलग था उसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री बना दी गई, क्योंकि ये पर्संस विद डिसेबिलिटीज को हमें एम्पावर करना है। तो आप लोगों को एनकरेज करिए कि वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ सकें, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको तरस मत खाइए, और जैसे कहते हैं कि पहले अपने पे वो सब करें, तो आप अपने पे रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम से बचाव के सारे नियम फॉलो कीजिए, और फिर दूसरों को भी एम्बेसडर्स बनिए इन प्रॉब्लम्स, आम प्रॉब्लम से बचने के लिए। ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा सारे श्रोता।
0: थैंक यू सो मच इतना पॉजिटिव मैसेज के लिए, और थोड़ा सेंसिटिव आप रहिए और दूसरे की परेशानी को समझिए और वैसा ही बिहेव उनके साथ करिए। अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे सके आज।

0: हमारे साथ रहे डॉक्टर HS छाबरा, डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी में और चेयरमैन हैं स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन में। बात की आज हमने एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार डॉक्टर साहब, यहाँ आप आए हैं, इतना समय आपने दिया।
1: बहुत धन्यवाद छानी मित्र जी, आपका आपने मौका दिया।
0: तो धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आप

हां जी, एक बारी फिर तो जी तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच। ते जी कॉल्स लग रही ने बैक टू बैक, ते गाने भी चल रहे ने बैक टू बैक, ते नाल

0: हाँ जी प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच देखदे आं जी, पहली कॉल तो हो गई सी डिस्कनेक्ट ते हुण देखदे आं कि कॉल किहदी लगी है ते ओह की दसना चाहुंदे ने सानू। हैलो
1: हैलो जलंधर।
0: हाँ जी हैलो जलंधर जी, कौन बोल रहा है?
1: हाँ जी मैं विशाल बोल रहा मैडम जी।
0: विशाल बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो?
1: मैं बूटा मंडी नकोदर रोड तों।
0: बूटा मंडी नकोदर रोड जलंधर तों।
1: जी जी
0: ठीक है जी। विशाल जी पहला तो बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच कॉल करन लई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू शुक्रिया जी।
0: अच्छा विशाल जी हुण तुसी मैनूं इह दस्सो, तुसी अज कॉल कीती है ते मतलब तुसी की करदे हो पहलां तां?
1: मैं जी कैमरामैन हो।
0: ओहो कैमरामैन हो, फोटोआं खिंचदे हो?
1: नहीं वीडियो शॉट करदे हो।
0: वीडियो शॉट करदे हो, कंटेंट क्रिएटर हो?
1: हां जी हां जी हां जी।
0: ठीक है ठीक है। व्याहां व्यूहां ते भी जांदे हो? कुछ अपना एक्सपीरियंस दसना चाहो सानू कि किदा किदा दे लोग मिलदे ने तुहानू कंटेंट क्रिएट या शूट करन लग्या? रोटी पानी दा ध्यान घट ही हुंदा है अजकल, ज्यादा फोटोज क्लिक करन ही जांदे है लोकी है। कैमरा तो मैं अजकल मैं लगता है साइड ते है ते आप ही वीडियो शूट हुंदी है ते अपने आप ही सब कुछ बनता रहिंदा है। खाने दे स्टॉल ते रश हुंदा है कि लोकी फोन लेके बस फोन दे दुआले

0: 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो जलंधर, ते तुसी बने हुए हो मेरे नाल, यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल। ते तुसी भी हेलो जलंधर दे विच शामिल हो सकते हो साढ़े नाल प्रोग्राम दे विच। 0181 43 144 दे उत्ते तुसी डायल करना है ये नंबर, ते गलबात करनी है मेरे नाल, ते नाल नाल सुणांगे तुहाडी चॉइस दा गाना भी। जी हाँ, तो देखते हैं जी हुन कॉल किदी लगी है अगली। हेलो
1: मैडम जी, प्यार करे, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: शम्मी बूटे वाला, मुजफ्फरपुर जलंधर रामा मंडी दे लागे।
0: शम्मी बूटे वाला जी बोल रहे ने?
1: हां जी मैडम जी।
0: ठीक है ठीक है ठीक है जी, की हाल चाल है तुम्हारे?
1: हां चाल है बड़ी बढ़िया, ते मेरी आकाशवाणी नु अजे नंबर सर हो गया ते।
0: हां जी,
1: बहुत मुबारकां
0: तानू भी, बहुत बहुत मुबारकां जी, जेड़े साडे रेगुलर लिसनर ने इन्ने टाइम तो साडे नाल जुड़े हुए ने, तानू सारेयां नु बहुत बहुत मुबारकां। ठीक है, अच्छा शम्मी जी, फिर तुसी गाना केड़ा सुनोगे अज?
1: बड़ी कंठ क्लियर दा कोई भी गीजरा दियो।
0: कंठ क्लियर दा कोई भी गाना चला देने। चलो ठीक है जी, सेलिब्रेशन करदे पए आ असी, ते फिर गाना भी अज असी उहनां दा थोड़ा जिहा सैड नहीं, थोड़ा जिहा वधिया ही लाने आ। हैं
1: शुक्रिया,
0: थोड़ा जिहा बीट सोंग लाने आ, है ना?
1: ठीक है,
0: हां हां। होर तुसी दसो फिर, किद्दां चल रिहा तुहाडा कामकार?
1: बड़ी कामकार चलदा, मिस्त्रियां नाल चलदा जांदे आ।
0: तुहाडा तां काम बहुत इंपोर्टेंट है बई, ते नाल नाल तुसी अपने नाम दे नाल बूटे वाला लाया होया। जिथो लै के आंदे हो बई, ओह तां संत आप ही इन्ना वधिया सोशल वर्क कर रहे ने, ते बहुत वधिया।
1: तो फिर सवेरे नहीं जाईदा, बूटे नु पानी लगा जाईदा एक टाइम सवेरे
0: नु। अच्छा, बहुत वधिया काम है, ता इत्तो वधिया चीज
1: नहीं।
0: ते किन्ने के बूटे ला चुके हो आज तक? वैसे तुसी आप भी अपने
1: साथ बड़ी पार्क बूटे तो बहुत लगे यार, 100 तो बूटा होना ही है पार्क विच।
0: वाह जी वाह, क्या बात है। ते जो दरख्त किन्ने लाए इना, जो दरख्त किन्ने लाए बूटियां चो?
1: दरख्त मैडम जिदा बूटे अपने अपने अनार भी आ, अंब भी आ, लगाठा भी आ, संतरे भी आ।
0: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत वधिया काम कर रहे हो तुसी। वैसे तुहानू देख के बाकी सारे नू भी सीखना चाहिए कि सिर्फ की कहिंदे ना, सीमेंट दे इट्टां दे नाल कुछ नहीं बनना, बनना असली इना बूटियां दे नाल ही है साडा जो भी बनना
1: है। बड़ी डाउन गर्मी पै रही है, मैं सारे दोस्तों ने कहना वध तो वध बूटे दे दरख्त लाओ।
0: बिल्कुल,
1: वातावरण नू बचाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिदा पिपल, बरगद, निम, इदां दे वड्डे दरख्त लगने चाहिए ने जिन्हां दी लाइफ बहुत लंबी है, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
1: ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ,
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ,
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ,
0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਖੈਰ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

0: हाँ जी, प्रोग्राम चल रहा है जी हैलो जलंधर, ते मौका मिलिया इस खूबसूरत जे गाने नू सारा सुनन दा, ते मैं गाना तुहानू सारा सुना भी दिता। प्रोग्राम दे विच बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल्स भी कीतियां ते गलबात भी साडी हुई सब दे नाल, ते हुण देखदे हां जी इस प्रोग्राम दे विच आखरी कॉल जिहड़ी आ ओह किहदी लगी है ते उहनां दी की फरमाइश है ते ओह किहड़ा गाना सुनना चाह रहे ने, की उहनां दी फरमाइश है, मैं हुणे लै रही हां उहनां नू कॉल दे उत्ते। हैलो
1: पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ना शराब, हमको तो नशा है मैडम जी, आकाशवाणी का जनाब।
0: वाह जी वाह, वाह जी वाह।
1: मैडम जी नमस्कार, टाइम बहुत थोड़ा रह गया।
0: हाँ जी,
1: ते मैं तुहाडी पहली तो वेलकम, तुहानू बहुत बहुत ताड़ियां तुहाडे लई है, क्लैपिंग करदा जी।
0: थैंक यू जी।
1: क्योंकि मैडम कल तुहानू याद कर रहे सीगे, वंदना मैडम आएगी तो 10 कॉलां लगनगियां, 10 ही लगियां मैडम, नोट कर रहा, एक मिस होई है विचों ते 9 तुसीं कॉलां लईआं।
0: हाँ जी हाँ जी, तुसीं तां पूरियां ही काउंट कीतियां होणियां चंगी तरह नाल।
1: मैं मैडम मैं देख रहा मैं 10-10 आप ला जी, 10 ही बोरियां लगियां।
0: हाँ
1: ऐसा क्योंकि मैडम बहुत इंतजार करते हैं, तुम छोटा छोटी जिदा गाने लगा के कोला लेंदे हो, बहुत खुश हाँ। अज शनिवार लग नहीं रहा फोन काफी दिन तो, मैं अच्छ सवेरे नींबू मर्चा बन के फोन नू पूजा पाठ की, मैं वंदना मैडम हां फिर जरूर लगे कॉल मेरी।
0: ठीक है जी, ठीक है, देख लो फिर सुन ली, अज तो बड़े कॉलर की मिलता सुनी गई है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, तुम जब आते हो ना फिर मैं 10 कॉल दी, मैंने वैसे मेन सी कोई मैडम एक दी कॉल और लग जाएगी, चलो कोई नहीं, टाइम हो गया जी,
0: हाँ जी
1: बहुत है गया।
0: हाँ हाँ हाँ
1: शुक्रिया अदा कर दे,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: तुम
0: इना रिगार्ड किया, थैंक यू सो मच। ते गाना हुन तुसी
1: नहीं मैडम, मैं नहीं, सारे दोस्त कर दे, याद कर दे तुहानू, असीं कल भी तुहानू याद कर रहे सी, कहंदे वंदना मैडम आन के ते साडी कॉल लगेगी, फटाफट कहंदे छोटे छोटे गाने लगा के फटाफट कॉल लगते हैं।
0: हाँ क्योंकि मैनू ऐ हुंदा कि मैं तुहाडे नाल ज्यादा गलबात करा।
1: हाँ जी हाँ जी, किसे नाराज भी नहीं करते, गलबात पूरी सुनते हैं और इज्जत मान पूरा दिंदे।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: इतना ही शुक्रिया जी। आकाशवाणी से कोई गैर नहीं
0: है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच,
1: मनने वाले हैं, कोई गैर नहीं।
0: हाँ जी ओके जी, शुक्रिया जी। जी टाइम तो वाकई बहुत थोड़ा जा रह गया है, गाना मेरे वास्ते बहुत मुश्किल होना है हुण वैसे तो प्ले करना, क्योंकि युववाणी दे आरजेस जड़े ने ना वो पहुंच चुके ने स्टूडियो दे विच अपने नवे की कहिंदे ना पिटारी लैके गल्लां बातां दी ते नाल नाल बुझारतां दी भी मैनूं लगदा है, ते देखदे आ जो की लैके आए ने। फिलहाल सुनदे आ इस एग्जैक्ट गाना जिहड़ा सतीश जी ने मैनूं कहा, तां मैं नहीं लगा पावांगी हले फिलहाल, ते इस गाने दे नाल इस प्रोग्राम नूं मैं वाइंड अप करांगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल्स करन लई, ते इसे तरीके दे नाल बने रहो साडे नाल। फिलहाल सुनदे आ इस प्रोग्राम दा आखरी ट्रैक, ते उस तों बाद इच ठीक 6 बजे मिलांगे। लव यू जिंदगी।

0: स्टाइल भी दस दिता कि तुसीं ओहदा की बना सकदे हो। कुर्ती बना सकदे हो, शॉर्ट
1: बिल्कुल
0: कुर्ती,
1: बिल्कुल,
0: लॉन्ग कुर्ती बना सकदे हो, तुसीं
1: सूट
0: सलवार
1: बना
0: सूट
1: सकदे हो।
0: बना
1: अजकल
0: सकदे हो।
1: प्लाजो सूट्स जिहड़े ने ओह बहुत ट्रेंड कर रहे ने, खुले खुले तुसीं जिहड़े सूट ओह बना सकदे हो। और दोस्तों इस दे नाल ही जिहड़े नाइलॉन दे कपड़े है या पोलिएस्टर दे कपड़े है या सिंथेटिक है, तुसीं गर्मियां तो इन्हां कपड़ियां तो बचो क्योंकि ये पसीना नहीं सोखदे।
0: हाँ, तो मैनू लगता कि कॉटन के कपड़े हो गए, रेयोन के कपड़े हो गए, यही ज़्यादातर सानू ना जिहड़ा फ्रैश फील करवाते हैं, तो और असीं
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कंफर्टेबल रहने हैं।
1: ते गल कर ली असी फैब्रिक दी, ते हुण आने असी कलर्स ते, जो कि
0: कलर्स
1: बहुत जरूरी है।
0: गर्मियाँ दे मैनू लगता कि अगर असी डार्क रेड कलर पा लीए, येलो पा लीए, तो मैनू लगता है कि वो शायद वो ना ज़्यादा धुप लग जाती है, ज़्यादा गर्मी
1: बिल्कुल
0: लगती है। कलर की चोन होनी भी मैनू लगता है कि स्टाइल दे विच बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
1: बिल्कुल
0: कपड़ा भी
1: बिल्कुल।
0: खरीद लिया जी, असी बना भी लिया, हुण असी कलर किस कलर दा बनवाइए वो भी असी तुहानू सुजेस्ट कर दिंदे हां।
1: बिल्कुल, ते गर्मियां विच तुसी हमेशा जड़े है पेस्टल कलर्स या कह लो कि हल्के कलर्स वाल जाना, जड़े सूरज दी गर्मी नू इजीली सोख लेंदे, ते तुहानू ज्यादा उहनां विच गर्मी नहीं
0: बिल्कुल,
1: लगदी।
0: फॉर एग्जाम्पल असीं दस सकते हैं वाइट कलर, उन तो पा के वैसे पीस दी फीलिंग आती है, तो
1: बिल्कुल,
0: मैनू लगता कि सूरज तुहाडे कोल या नेड़े वेड़े वज्जन लगा
1: वाइट
0: है।
1: कलर नू ते गर्मियां दा किंग कहंदे आ ना
0: हाँ,
1: असी।
0: ते क्रीम हो गया, पीच हो गया, लवेंडर हो गया,
1: बिल्कुल,
0: मिंट
1: मिंट
0: हो गया,
1: ग्रीन हो गया,
0: स्काई
1: गुलाबी
0: ब्लू असीं गल
1: कलर
0: कर लिए।
1: जड़ा हल्का हल्का शेड पिंक दा चल रहा, बेबी पिंक विच वो भी
0: हाँ,
1: बहुत ट्रेंड कर रहा अजकल।
0: ते ये जिहड़ी सनलाइट नू ना रिफ्लेक्ट करदे आ, दैट्स वाई जिहड़े कपड़े आ इहनां विच तुहानू है ना गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है। ते होर की तुसी कपड़े भी है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कपड़े दे कलर दी चोन मैनू लगदा कि बहुत वधिया, ते आपां भी बड़े सोहणे कपड़े पाए होए
1: बिल्कुल जी
0: है
1: बिल्कुल। ते ये गल सिर्फ कुड़ियां लिए नहीं, मुंडियां लिए भी है, क्योंकि
0: हाँ
1: साडी टिप्स दोवां लिए है। सो ये ना समझी जाइयो कि असी सिर्फ कुड़ियां लिए टिप्स दे रहे हैं,
0: हाँ
1: ये सारियां टिप्स जड़ियां ने
0: मुंडे भी
1: मुंडे भी
0: यार
1: फॉलो कर
0: कॉटन दे
1: सकदे ने।
0: कुर्ता पजामा बना सकते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: एंड शर्ट पा सकते हैं
1: और
0: कॉटन
1: हल्के
0: दी,
1: कलर्स च,
0: हल्के कलर्स जो चेक शर्ट पा सकते हैं तुसी, बिल्कुल लाइट वाइट हो गया, ब्लू कलर हो गया, लाइट ब्लू कलर, इस कलर दे विच तुसी वेयर कर सकते हो।
1: बिल्कुल
0: एंड
1: बिल्कुल।
0: वाइट कलर दी शर्ट असी पा सकते हैं। ब्लैक रंग भी मैनू लगता है कि गर्मियां दे विच थोड़ा जिहा अवॉइड करना चाहिए सानू, वो भी कितने ना कितने सानू गर्मी जरूर करती है। सो तुसी वाइट टॉप दे नाल जिद्दां कि डेनिम दी जीन वेयर कर ली, और कुड़ियां दे लई असी पीच कुर्ती हो गई, वाइट प्लाजो तुसी,
1: बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन ना बहुत
0: हाँ
1: ट्रेंड च, इंस्टा ते भी मैनू लगदा छाया ही होया पूरा।
0: सोशल मीडिया ते तां पूरा ही
1: बिल्कुल
0: छाया होया। वैसे तां हर एक टिप्स सानू मिल ही जांदे आ, पर गर्मियां दे विच जिवें कि ना बड़े ही इरिटेट हो जांदे आ ना असीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्ने सारे इन्फ्लुएंसर है, सारे दी पसंद भी वक्री वक्री है, ते असी जेड़े होना तो इन्फ्लुएंस होने वाले हैं,
0: हाँ
1: असी कंफ्यूज रहने कि असी जाना किधर
0: हाँ
1: वाले
0: पर
1: पासे।
0: यही है कि बहुत सारे इदां दे भी साडे जिहड़े लिसनर्स है, साडे गर्ल्स बॉयज जिहड़े कि मतलब सूट वेयर नहीं करदे आ ज़्यादा, कुर्तियां वेयर्स नहीं करदे आ, कोई चक्कर नहीं है, असीं तुहाडे लई भी बहुत सारे फिट्स लै के आवांगे कि तुसीं अगर सूट वेयर नहीं करते हो तो तुहाडे लई असीं की लैके आ सकते हैं, वो भी तुहानूं गर्मियां दे विच कंफर्टेबल कर सकते
1: बिल्कुल
0: ने। बट मैनूं लगता है कि गपशप साडी ज़्यादा हो गई है,
1: बिल्कुल।
0: ते वेला हो गया जी, तुहानूं एक म्यूजिकल ब्रेक दे दिए, ते तुसीं इंजॉय करके आओ ट्रैक, एंड मिलते हैं असीं फिर।

मैं तुमसे कहूंगी ते बिल्कुल जी, असीं भी तुहाडे लई जड़ियां बुझारतां होर ते टंग ट्विस्टर होर लै के आ चुके हां। ते वारी है हुण बुझारत दी, ते बुझारत है जी विंग तड़िंगा भाई ते ओदे खाकी वर्दी पाई। बुझारत मैं दोबारा रिपीट कर देनी हां जी, विंग तड़िंगा भाई ओदे खाकी वर्दी पाई। ते एक छोटा जिहा हिंट दे देनी हां कि ये चीज़ जिहड़ी है ना रसोई च मिलदी है। ते तुसी जवाब देने लई नंबर नोट कर लो जी, 0181 2342174। तद तक इंतजार करते हां तुहाडे कॉल दा ते इंजॉय करते हां ये गाना।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

हाँ जी, प्रोग्राम तुसी एंजॉय कर रहे हो अपनी दोस्त वंदना दे नाल, ते प्रोग्राम दा नाम है जी लव यू जिंदगी। अच्छा, असी अज गल कर रहे हैं एहसासां दी कि जिंदगी नू एहसास दे नाल जीना किन्ना ज़्यादा जरूरी है, महसूस करना जरूरी है जिंदगी नू, क्योंकि जिंदगी तो हर कोई जी रहा है, पर जिंदगी नू जड़ा इंसान महसूस करके जींदा है ना, वह जिंदगी नू जी भर के जींदा है। क्योंकि वह डायलॉग याद आ जाता है ना आनंद मूवी का, जदों राजेश खन्ना जी कहते हैं बाबू मशाए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो असी इन्ना ज़्यादा भजदे दौड़ते पे ना इस जिंदगी दे विच, कभी तुसीं नोटिस कीता है कि सनसैट होए या फिर तुसीं किसी कॉन्सर्ट ते गए हो, किसी फैमिली फंक्शन ते गए हो, या फिर नेचर का कोई भी नज़ारा जड़ा तुसीं देख रहे हो, तुसीं देखते दे नहीं उन्हों। अजकल की ट्रेंड बन गया, अजकल उस चीज़ नू फटाफट तो फोन दे विच क्लिक करन दा ट्रेंड बन गया कि असी इनू कैप्चर कर लीए, पहला असी उस चीज़ का एहसास चाहे करिए ना करिए, बस असी उन्हों कैमरे विच कैप्चर कर लीए। और ये चीज़ तुहानू हर जगह पर देखने को मिलेगी, फटाफट तो फोन कढ़ो तो फटाफट तो फोटो क्लिक कर लो तो उन्हों सोशल मीडिया पर पा दिओ ज़्यादा लाइक्स के कमेंट्स के चक्कर च। बस असी हर चीज़ नू सिर्फ सेव करना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम अपने फोनां दे विच, अपनी गैलरीज़ दे विच, किसे प्रोग्राम दे विच गए हैं तां उत्थे भी यही, पर असी उन्हां चीज़ां नू महसूस ही नहीं कर पा रहे। गैलरी विच रखन दी बजाए असी उन्हां चीज़ां उन्हां यादां नू अपने दिल दे विच बसा ही नहीं पा रहे, क्योंकि असी जी ही नहीं पा रहे उन्हां यादां नू। मैं यही कहांगी कि कुछ मोमेंट्स जड़े होंगे ने ना वो जीन लई होंगे ने, कुछ मोमेंट्स जड़े होंगे ने सिर्फ कैमरे च कैप्चर करने लई नहीं होंगे। इस करके जिंदगी नू जियो, जिंदगी नू अपने कैमरे ते गैलरियां विच ही सेव ना रखो, उन्हां नू अपनियां यादां विच सेव रखो, अपने एहसासां विच सेव रखो, ताकि जदों भी कदी लगे कि जिंदगी जी के नहीं वेखी, उन्हां सारियां यादां नू असी महसूस कर सकीए। खैर, फिलहाल लव यू जिंदगी इस तरीके दे नाल चलता रहेगा ते मैं तुहाडे नाल बहुत सारिया गल्लां बातां करांगी, पर हुण फिलहाल वेला हो गया जी प्रादेशिक खबरां दा। प्रादेशिक खबरां तो बाद विच मैं वापस आवांगी ते फिर असी इस प्रोग्राम नू कंटिन्यू करांगे।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब दे सनत मंत्री संजीव अरोड़ा नूं अज मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच ईडी वल्लों चंडीगढ़ स्थित उन्हां दी रिहायश तों गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवावां अथॉरिटी नालसा वल्लों देश भर विच इस साल की दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लाई गई। पंजाब भर च वी लोक अदालतां लाईआं गईआं। आकाशवाणी की स्थापना के 90 साल पूरे होने मनाने लिए राष्ट्रीय लोक प्रसारक के जलंधर और पटियाला स्टेशनों ने आज वॉकेथॉन कराई। होशियारपुर में एक बेकाबू ट्रक हादसे में एक औरत समेत 3 लोगों की मौत। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला शामी 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स नाल होगा।

हाँ जी, प्रोग्राम लव यू जिंदगी, जिथे असी करते हाँ जिंदगी नू प्यार, ते नाल नाल असी करते हाँ बहुत सारिया गल्लां बातां, क्योंकि जिंदगी दे एहसास दा नाम ही, जिंदगी नू एहसास दे नाल जीन दा नाम, ते जिंदगी नू प्यार करन दा नाम ही तां लव यू जिंदगी है।

जी हाँ, जिंदगी नू हमेशा प्यार करो, क्योंकि परमात्मा ने सानू ये जड़ा जन्म दिता है ना, ये पता नहीं कित्थे कित्थे घूम घाम के असी आए हाँ, तो फिर अखीर सानू ये जन्म मिले। तो असी दौड़ भज दे विच ना अपनी जिंदगी दे बहुत सारे वड्डे हिस्से नू जड़ा गवा दिने हाँ। तो कई बार बैठ के सोचते हैं ना, तो इदा लगता है कि जिंदगी किदा फटाफट तो निकल गई है। ज़िंदगी विच हर एक काम करना जरूरी है, पर उदे नाल नाल अपने वास्ते भी कुछ पल कढ़ने जरूरी ने। हैशटैग पहले मैं। जी हाँ, बस इस हैशटैग नू तुसी अपनी जिंदगी दा ना कहंदे है कि एक बना लेना है एक एम कि पहले मैं। सारियां चीज़ां जरूरी ने, पर उदे नाल नाल मेरा भी अपना वजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिदा हम किसी नूं लाइफ दे विच जदों ब्रेक चाहिए, हर किसी नूं पहला तो लाइफ दे विच ब्रेक चाहिए ही चाहिए हुंदा है। अपनी डेली रूटीन तो हर कोई तंग आ जाता है, तो जे तुसीं अपनी डेली रूटीन तो तंग नहीं आ रहे ना कि मैं रोज़ सेम एको ही चीज़ करता जा रहा तो मैं बोर नहीं हो रहा, तो दैट मीनस कि तुसीं अपने आप नूं मशीन बना लिया कितने। जी हाँ, इस करके लाइफ दे विच ब्रेक बहुत ज़्यादा जरूरी है। लाइफ दे विच सेम रूटीन नहीं होनी चाहिए, रूटीन कुछ कुछ दिनों दे विच उस रूटीन नूं ब्रेक करना चाहिए। जिंदगी नूं कुछ अलग तरीके दे नाल एक दिन स्पेंड करो, चाहे वह संडे ही होए, ताकि कुछ नवापन आए अगले हफ्ते जिंदगी दे विच। अच्छा, ब्रेक दे भी ना बड़े तरीके हो सकते हैं। जिदा कि कई लोग इदा समझते हैं कि ब्रेक चाहिए इस करके मैं हिल स्टेशन ते घूमन जाना है, कई लोग ये सोचते हैं कि मैनू ब्रेक चाहिए इस करके मैं म्यूजिक सुनना है, कई लोग लोंग ड्राइव ते निकल जाते हैं। पर कई बार इदा सारिया चीज़ा जड़िया ने सब वास्ते पॉसीबल नहीं होंदिया, क्योंकि हर एक दे घर दी स्टोरी ते हर एक दे सरकमस्टांसिस अलग अलग ने। ते फिर जे असी ये सब कुछ ना कर सकी तो असी की करिए फिर? ते असी सब तो चंगा तरीका जड़ा कर सकते हैं ना, अपनी छत ते कुछ शाम दे वेले कुछ टाइम बिताओ, चाहे एक चाह दा कप होए हाथ विच, सनसैट नू देखदिया होया, फोन नू दूर रख के सुनो आवाज़ जड़ी आस पास दी, नेचर दी आवाज़, आवाज़ां किसी भी तरीके दियां हो सकदियां, पर उन्हां नू सुनो ते महसूस करो उस परमात्मा की बनाई हुई इस कुदरत नू। क्योंकि भज दौड़ जड़ी है ना वो कदी मुकनी नहीं जब तक असी जींदे हाँ, पर कुछ टाइम अपने लिए कढ़ना भी जरूरी है। इस करके पहले मैं। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सिर्फ एक मैं एक एग्जाम्पल दिता, जिदा तुसी शाम नू पौद्यां दे नाल टाइम बिता सकते हो, पेड़ पौद्यां नू पानी दिंदिया होया, उन्हां दे नाल भी बड़ियां सारियां गल्लां बातां हो जांदियां ने। ते तुसी जदों धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे ना, तो तुहानूं पेड़ पौद्यां दे नाल भी प्यार हो जाएगा। ते फिर बस शाम तुहाडी या फिर अर्ली मॉर्निंग सवेर जिहड़ी है वो तुहाडी पेड़ पौद्यां दे नाल निकलेगी, तो तुसी देखियो कि स्ट्रैस जिहड़ा है ना वो किन्नी जल्दी मतलब छू मंतर हो जाएगा। तो तुसी जड़ा है ना थोड़े जे बेफिक्रे जे हो जाओगे। तो बेफिक्रे होण दे लई हुण एक गाना सुनना भी बहुत जरूरी है, एक गाना तो बनता है। तो लो जी, मैं प्ले करन जा रही हूँ एक बहुत ही सोहना जिहा ट्रैक, तो मिलते हैं इस गीत ते उस पार प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच। अज मैं गल कर रही हूँ एहसासां दी, ते एहसास साडी जिंदगी च किन्ने जरूरी ने।

जी हाँ, लूज कंट्रोल। कदी कदी जिंदगी दे विच मस्ती दी पाठशाला बनाओ ते अपना कंट्रोल लूज करके, मतलब कि अपनी मस्ती दे विच जियो। जरूरी नहीं है हर वारी लोकां दे बारे च सोचते रहना। और तुहानूं पता है कि अजकल ना जदों मैं गल कर रही हाँ एहसासां दी ते अपने अंदर दे असली इंसान नूं पहचानन दी ना, कई बार की हुंदा कि असी इन्ने ज़्यादा फेक हो चुके हैं ना दुनिया दे विच कि सानूं पता ही नहीं चल रहा कि असी हैगे कौन आ। जिदा कि हुण तुहानूं अपने ही डिफरेंट डिफरेंट वर्जनस देखण नूं मिलणगे, तुसी लोकां नाल मिल

नमस्कार, पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। भारत ने उड़ीसा दे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टापू तो एमआईआरवी सिस्टम नाल एक अति आधुनिक अग्नि मिजाइल दी सफल परख की है। पंजाब दे सनत मंत्री संजीव अरोड़ा नू अज मनी लॉन्ड्रिंग मामले च ईडी वालों चंडीगढ़ स्थित उन्हां दी रिहायश तो गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवावां अथॉरिटी नालसा वालों अज देश भर च इस साल की दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। पंजाब भर च भी लोक अदालतां लाईआं गईआं। आकाशवाणी की स्थापना दे 90 साल पूरे होण नूं मनाउण लई राष्ट्रीय लोक प्रसारक दे जलंधर ते पटियाला स्टेशन ने अज वाकथॉन कराई। होशियारपुर च एक बेकाबू ट्रक हादसे च एक औरत समेत 3 लोगों की मौत। तरन तारण पुलिस दे CIA स्टाफ ने एक अफ्रीकी औरत नूं 3 किलो हेरोइन ते एक कार समेत गिरफ्तार करके वड्डी सफलता हासिल की है।

हेलो हाँ नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने हरीश हाजिर हो गया एक बार फिर तुहाडे नाल इस सफर नू हसीन हसीन बनाउण दे लई 102.7 एफएम रेनबो ते आ चुका मैं और तुहाडे नाल मेरा अज दा इस सफर हसीन होण वाला है बहुत ज्यादा हसीन और अलग अलग पड़ा तो लंघदे होए असी 11 बजे तक एक दूसरे दे नाल इस तरह जुड़े रहांगे और इस वेले एफ एम कड़ी ते 7:40 हो चुके ने तो हड़ा मेरा जड़ा ए एंटरटेनमेंट दा इनफोटेनमेंट दा जड़ा सफ़र है उसका आगाज हो चुका है और मैं आज दा अपना पहला पड़ा फिल्मी जगत लैके हाजिर हाँ जनाब साड़ा प्रोग्राम फिल्मी दुनिया जिस विच ओ दुनिया दे बारे तुहानू मैं दसदा जिस दुनिया नू असी जानना चाहुंदे आ जिस दुनिया की चकाचौंध सानू भरमाउंदी है जिस दुनिया की चकाचौंध नू असी जानना चाहुंदे आ मानना चाहुंदे आ और उस नगरी दे विच की हुंदा की वापरदा है वह सब कुछ सानू अखबारां सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया सब तो पता लगता है बट जदों सानू कोई आप उन्हां कहानियां बारे या किसी उस कला दे खेतर दे नाल जुड़े हुए परसन दे बारे दसदा ना उहदियां खट्टियां मिठियां यादां ते उहदा मज़ा कुछ होर ही हुंदा निराला ही हुंदा जदों कोई दसे कि वह फलाना शख्स सी उहदे नाल इदां होया ते उस तो बाद वह शख्स हीरो बनिया या उहदी लाइफ दे विच इह इह कुछ होया तां उस तो बाद वो जिहड़ी कहानी है ना वह सानू बहुत ज़्यादा मोटीवेट करती है अगे वधण दे लई और उस कलाकार दी जिंदगी बारे जाण के सानू बहुत कुछ पता लगता उहदे बारे इदां दा ही अज एक सफ़र तुहाडे लई मैं लैके आया और अज दी ओ हस्ती ओ शख्सियत जिहदे बारे गलबात होएगी ओ ने कमाल दे सिंगर ओ सिंगर जो एक बार गाउंदे गाउंदे भुल गया सी पर उस तो बाद उसने अजिही सिख्या लई अजिहा अपने नाल एक वादा कीता कि मैं करियर बनावांगा ते इसे खेतर दे विच बनावांगा मेहनत करांगा और इसे खेतर दे विच अपने आप नूं चमकावांगा और ओ बॉलीवुड दा एक नामी गायक बनिया अपना नाम चमकाया और पूरी दुनिया दे विच हिट होया वो सिंगर जिसने पहली बार वर्ल्ड टूर कीता सिंगिंग दा गायकी दा तलत महमूद साहब जिन्हां दे बारे अज असी गल करांगे और बखूबी गल्लां होणगियां और नाल नाल उन्हां दी जिंदगी बारे खट्टियां मिठियां यादां नाल शेयर करांगा बहुत सारियां गल्लां होणगियां बट इस वेले ये ट्रैक इंजॉय करदे और गल्लां बहुत ज़्यादा ने उन्हां दे बारे आ जाओ ये ट्रैक सुन दिया पहला

उस रब ने ही। और जदों इस शौक दे बारे पता लगा उन्हां दी भूआ जी नूं, तां भूआ जी ने फैमिली दे नाल गल कीती और फैमिली नूं समझाया कि जेकर मुंडा गायक बनना चाहुंदा है, सीखना चाहुंदा है, सुनना चाहुंदा है गायकी, तां फिर हर्ज की है, तुहानूं काहदी मतलब किस चीज़ की दिक्कत है। तां फैमिली नूं इह गल समझ आई और उन्होंने इस गल नूं बखूबी ढंग नाल समझिया, अपने पुत्तर नूं समझिया ते उस पुत्तर दे लई इक ग्रैमोफोन लिया के दिता। ग्रैमोफोन जदों घर दे विच आया तां फिर खुशियां आ गईयां और लाइफ दा ट्रैक पूरी तरह दे नाल समझ आ गया तलत साहब नूं कि हुण तां जिंदगी दे विच कुछ करना है तां इहो करना। ग्रैमोफोन दे विच जिन्हां दे गाने मैं सुणदा, मेरा गाना भी इस ग्रैमोफोन दे विच जरूर वजेगा, मेरे रिकॉर्ड भी बनणगे। ग्रैमोफोन दे विच ओ किन्हां दे गाने सुनदे सी, ओ कौन गायक सी जो उन्हां नूं बहुत ज़्यादा पसंद सी उस वेले दा महान गायक, सारियां गल्लां होणगियां तलत महमूद साहब दीवान जुड़ियां होईयां। जो गायक उन्हां नूं पसंद सी उस गायक दी उन्हां ने बड़ी रियाज कीती और लोग कहण लगे कि इहदी आवाज़ उस गायक नाल मिलदी है। वो कौन गायक सी और की वो वाकई उन्हां वांग गाउंदे सी या सिर्फ आवाज़ ही मिलती सी, सब कुछ दसांगा तुहानू तलत महमूद दी लाइफ दे नाल जुड़िया होया। फिलहाल इस वेले एक होर ट्रैक आपां इंजॉय करदे हां और वापस आना तो तलत महमूद दी लाइफ दे नाल जुड़ियां होर भी खट्टियां मिठियां गल्लां शेयर करदा रहांगा तुहाडे नाल। 102.7 FM रेनबो जिथे शो चल रहा है कमाल दा फिल्मी दुनिया हरीश दे नाल।

107 एफएम रेनबो दे हरीश हाजर है जी और प्रोग्राम चल रहा है नेट वाणी। मैनू पता तुहानू नहीं लोड हुण किसे भी कादी हाँ महाराज पता है मैनू नहीं चाहता तुहानू कोई भी पानी ताणी चल रहा प्रोग्राम नेट वाणी मतलब गल बननी चाहिए गल बनानी आनी चाहिए है महाराज। इस तरह एक होर शख्स ने अपनी गल बना ली है केड़ा शख्स अजकल इंटरनेट पर ना बहुत सारिया वीडियोज़ जड़िया ने फनी वीडियोज़ बड़ी वायरल होंगे ने और सानू ज़्यादा पसंद आदि ने असी अगे शेयर करते हैं फॉरवर्ड करते हैं कमेंट करते हैं लाइक्स करते हैं और अपन वीडियोज़ भी कभी कभी पा के कभी कभी नहीं मतलब अक्सर पाने फोटो शोटोज़ पाने और असी कहने चाहते हाँ सारे साड़िया फोटोज़ में लाइक कर कमेंट कर और जो कोई नहीं करता तो फिर थोड़ा जहा दिल दुखदा है ना। मैनू पता है मैं समझदा इस दुख तो चंगी तरह वाकफ हाँ मैं भी क्योंकि हाँ मैं भी इदा दे मतलब मैं भी वीडियोज़ पाना ना हूँ की दसा तुहानू महाराज। खैर वीडियोज़ की गल कर रहा सी एक शख्स जी अजकल इंटरनेट पर तुम वीडियोज़ बड़िया देखते हो और कुछ स्क्रिप्टड होंदिया ने कुछ ज़्यादातर स्क्रिप्टड ही होंदिया ने और AI के नाल भी बनिया बहुत सारी वीडियोज़ अच मतलब खैर AI की गल बाद करते हैं आप वीडियोज़ जिस विच बॉस कहिंदा है कि मैं तुहानू एक हफ्ते की छुट्टी देंगा जिहड़ा शख्स मेरा जवाब दे देगा मेरी गल का मतलब मेरे सवाल का जवाब दे देगा। तो बंदा एक तुहाडे वर्गा बड़ा चलाक सी बॉस ने जदों ये गल की कि जिहड़ा मेरे सवाल का दे देगा जवाब उन्हूं मिलेगी एक हफ्ते की छुट्टी और कोई पैसा नहीं कटांगा सगों उन्हूं इनाम दिता जाएगा। बंदा गेंद दिंदा सट थले और बॉस कहिंदा कि आ गिने सिटी हूँ टैक्नीकली तो सवाल का जवाब उन्हें देना सी देता बॉस गया फस तो कहिंदा दियो महाराज हूँ एक हफ्ते की छुट्टी जवाब बिल्कुल सही दिता मैं इदा महाराज चला मतलब लोगों की कमी नहीं हैगी क्रिएटिव बनना चाहिए और क्रिएटिविटी जी है ना वो लुकी नहीं रहनी चाहिए कभी कभी असी लुका के रखते हैं बट अजकल हर शख्स की क्रिएटिविटी निकल रही है महाराज। सोशल मीडिया से की नहीं असी वेख रहे ओ चीज़ा जिहड़ियां ने असी वेख रहे हैं कोई खाने की वीडियो बनाउण की नहीं गल कर रहे महाराज खाण की गल कर रहे हैं कोई घट खांदा ओदी वीडियो कोई ज़्यादा खांदा ओदी वीडियो कोई उल्टा हो के खांदा ओदी वीडियो कोई मतलब लेट के खांदा ओदी वीडियो कोई मैं कहना मुठ्ठा भर भर के खांदा भर भर के खांदा मूँह च पाउंदा तुन्नी जांदा ओदी वीडियो की नहीं असी सोशल मीडिया से वेखते जो तुसी अपने अखां बंद करके इमेजिन करो ना तुहानू सोशल मीडिया ते वह नज़र आएगा। सीरीयसली महाराज ये टकनीक हैगी है मतलब ये साडे हाथ दे विच जो गैजट इस वेले फड़े है ना असी यदी महानता कह लो यदा ड्रॉबैक कह लो या ये साड़ी माड़ी किस्मत कह लो कि साड़ियाँ जिहड़ियां परसनल साड़ी थिंकिंग भी है ना वह भी ये जानता कि असी सोच की रहे हैं इस वेले और इस करके ये सब सानू उही चीज़ां विखाउंदा जो असी इमेजिन करते हैं सोचते हैं जो भी अखां बंद करके सोचो सब कुछ साडे सामने होएगा। सिर पीड़ की गल करो सिर पीड़ दी वीडियो विखाएगा महाराज तुहानू तुसी बीमार होण दी वीडियो मतलब बीमार होण बारे या फलाना बीमार है फलानी चीज़ या फलाने डिजीज़ नाल बीमार है ओदियां वीडियोज़ तुहानू मिलणगियां वेखण नू मिलणगियां मतलब कि तुसी ये ना समझो कि तुसी दीवारां दे विच बैठे मतलब कमरे दे विच बैठे हो और कहिंदे ना कि दीवारां दे भी कन्न हुंदे आ कहिंदे सी ना पहलां कि कंधां दे कन्न हुंदे आ हौली बोलो हुण तां महाराज कन्न साडे नाल नाल घुम्मण डए ने भावें बंद भी कर लो तां भी मतलब आ एक कन्न जिहड़ा ना ये बड़ा डिजिटल कन्न है जिहड़ी इन्नी तगड़ी रेंज है भावें तुसी बोलो भी ना ये तां भी समझ आता है ऐसी गलबात है यदि मतलब एवें नहीं महाराज ये सारिया टकनीक्स जिहड़ियां ने साडे हाथ दे विच हैगियां ने भावें असी जिन्नियां मर्जी एप्लीकेशन जिहड़ियां ने अपने फोन दे विच स्टोर कीतियां हुई हैं असी कहने हैं कि साडी मुठ्ठी दे विच सारा जहान है साडी मुठ्ठी दे विच पूरा वर्ल्ड है असी इत्थे बैठे पूरे वर्ल्ड नाल गलबात कर सकते हैं सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं बट इहदा ड्रॉबैक भी है कि सारी जानकारी साडी इहदे कोल है बिल्कुल और ये गल मननी पैनी है। अज दे टाइम दे विच जेकर सानू कोई शख्स सब तो बेहतर

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

107 FM रेनबो ते हरीश हाजर है। और दोस्तों सेहत जड़ी है साड़ी बड़ी लाजमी है, और जदों सेहत दे नाल कोई खिलवाड़ कीता जाता है तो फिर सेहत भी अपना खिलवाड़ सानू करके विखाउंदी है। तू कित्थे जावेगा मेरे नाल इदां कर रहे हैं, मतलब कहण दा है कि ना सौण दा टाइम, ना रात नू खाण दा टाइम, और ना ही सवेरे उठण दा टाइम, ना ही दोपहर दी रोटी दा टाइम। मतलब जदों दिल किया उदों खाधा जा रहा, जदों दिल किया उदों सोया जा रहा, जदों दिल किया उदों उठाया जा रहा, जदों दिल किया उदों नहाया जा रहा। वैसे नहा मतलब कई इदा दे हैगे ने शख्स जिहड़े कदे कदाई नहाउंदे ने, बट अजकल तां गर्मी है और गर्मी दे मौसम दे विच हर रोज़ नहाउणा चाहीदा। मतलब जेकर असीं नॉर्थ की गल करिए इत्थे तां फिर भी मौसम जिहड़ा उह थोड़ा जिहा ठीक है, पर कुछ इदा दे गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे कुछ इदा दे इलाके है जिथे जिहड़ा लोकां दा जिहड़ा लाइफ जिहड़ी लाइफ है उहनां दी उह थोड़ी जी औखी हुंदी, बट इत्थे माहौल जिहड़ा सानू साडे मुताबक मिलदा और ठीक है। मौसम जिहड़ा उह चेंज हुंदा और उस चेंज दे मुताबक सानू मतलब अपनी सेहत दा ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अजकल जिवें मौसम चेंज हो रहा बुखार जिहड़ा वो लोगों बहुत हो रहा, और इस तब्दीली दे करके अपना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, और खास करके न्याणियां दा, क्योंकि अजकल कई इदां दे स्कूल ने जिथे छुट्टियां जिहड़ियां होण वालियां ने, बट कुछ इदां दे स्कूल ने जेकर प्राइवेट सैक्टर की गल करिए तां बच्चियां दे एग्जाम्स चल रहे ने। एग्जाम्स दे दिनां दे विच बच्चा बीमार होवे तां फिर भावें कच्चे पेपर ही है महाराज, पर फिर भी एग्जाम्स तां एग्जाम्स ने, क्योंकि मतलब बच्चा छोटा भी होवे ना। हुण मैं गल दसदा अपनी सिस्टर दी, आपां हर कोई चाहुंदा है कि घर दे विच परौणे आउण, खार करके मतलब जेकर सिस्टर दूर व्याई है तो असीं कहिंदे आ कि छुट्टियां पैण वालियां, मतलब छुट्टियां पै गईयां होणियां, आ जाओ हुण उहदे उहनां दे एग्जाम्स है, बट असीं कहिंदे आ कि एग्जाम कहिड़ा उहने बी ए दे पेपर देने आ, फिर की हो गया, छड्डिया भी जा सकदा है इक एग्जाम, बट नहीं। बट इसे तरह हर चीज़ का जेकर असीं ध्यान रखते हैं तो बच्चों की सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए, और टाइम टू टाइम उना दी हर डाइट दा ध्यान, और उना दी डाइट दा ध्यान असी तां ही रखांगे जदों असी अपना ध्यान रखांगे। और अजकल जिवें मैं पहलां कहा कि असी रात नूं लेट खाने हां और की खाने हां ये बहुत ज़्यादा जिहड़ा वो डिपेंड करता है चीज़ साढ़े सवेरे उठण दे उत्ते और सेहत ठीक रहण दे उत्ते। जदों असी भर पेट रात नूं 11-12 बजे तुन तुन के खाने हां, एक दिन चलता, दो दिन चलता, तीन दिन चलता, बट एक दिन इदा दा आउंदा जदों सवेरे पेट जिहड़ा कहिंदा कि ना बई ना मैं नहीं उठदा, तू उठ गया पर मैं नहीं उठदा, पेट महाराज गुम।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अज पछमी बंगाल के नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुक ली है। तमिलनाडु च सी जोसफ विजय की अगवाई वाली टीवीके ने दावा किया है कि उन्होंने पार्टी नू राज नवी सरकार बनाने 120 विधायकों का समर्थन मिल गया है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा नू मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी मामले च चंडीगढ़ तो गिरफ्तार किया है। भारत ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टापू तो MRV सिस्टम नाल लैस उन्नत अग्नि मिजाइल का सफल परीक्षण किया। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के जेतुआ का ऐलान कर दिता है। ये पुरस्कार देश भर चो चुनिया गई 42 पंचायतों को दिते जाएंगे। राष्ट्रीय कानूनी सेवावां अथॉरिटी नालसा वल्लों अज देश भर च इस साल की दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। पंजाब भर च भी लोक अदालतां लाईआं गईआं। आकाशवाणी की स्थापना के 90 साल पूरे होण नूं मनाउण लई राष्ट्रीय लोक प्रसारक दे जलंधर ते पटियाला स्टेशनों ने अज वाकाथॉन कराई। तरन तारण पुलिस के CIA स्टाफ ने एक अफ्रीकी औरत नूं 3 किलो हैरोइन ते एक कार समेत गिरफ्तार करके वड्डी सफलता हासिल कीती है। पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दस्सिया कि 2025-26 च रोपड़ नहरी नैटवर्क हेठ सिंचाई रकबा 29,488 करोड़ तो वध के 85,447 एकड़ हो गया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने डॉक्टर हरि सिंह सीनियर सैकेंडरी स्कूल कोटकपुरा विखे क्रिकेट खेड मैदान का नींह पत्थर रखा ते खेड मैदान के विकास कार्य लई 5 लाख रुपए की ग्रांट भी दिती। भारत के साहिल जाधव ने चीन के शंघाई च तीरंदाजी विश्व कप 2026 च मर्दा के व्यक्तिगत कंपाउंड मुकाबले च कांसे का पदक जितया है। इस सन FM न्यूज हेडलाइंस। हुण तो कुछ कु पलां बाद तुसीं साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे दिल चाहता है।

स्टार्ट होने वाली है महाराज। पहला मैसेज पढ़ दें जी। प्रोग्राम दिल चाहता पेश करता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, हार्दिक अभिनंदन। हमें बहुत अच्छा लगता है जब प्रोग्राम में आपकी प्रस्तुति सुनते हैं, तो हमारी पसंद पूरी करना जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिल्म दीवाना गीत के बोल, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार, आवाज़ कुमार सानू, साधना सरगम। और भेजिया जी ये मैसेज रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। ये मैसेज मेरे तक पहुँचे है, तो फिर चलो ये पहली फरमाइश जी साढ़े तक पहुँची है, असी पढ़ीए तो पूरी कर दें जी। आ जाओ फिर।

नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे बेटे, रोना नहीं, क्योंकि ये थे प्रोग्राम जड़ा है इस वेले कहानियां पूरियां करने वाला है महाराज, फरमाइशां पूरियां करने वाला, अधूरा काम असी कोई नहीं करना। 107 FM रेनबो ते दिल चाहता है प्रोग्राम जिसका आगाज हो चुका है, थोड़ियां फरमाइशां जड़ियां नहीं।

जी, धन्यवाद जी, तुसी शामिल हो गए हो जी, थैंक यू सो मच। आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, अगला मैसेज है जी। आदरणीय प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कर लीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी, थैंक यू। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से मैसेज मेरे तक पहुँचा जी, थैंक यू सो मच ये मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। और थोड़े मैसेजेस बड़े प्यारे मेरे तक पहुँचे ने, तो फरमाइश पूरी करते हैं जी। हूँ असी जब जब प्यार पे पहरा हुआ है और भी गहरा हुआ है।

गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड होस्ट जी, थैंक यू जी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रा, रोजी डिकेस्ट्रा, पर्ल डिकेस्ट्रा, विलिस डिकेस्ट्रा, सॉन्ग अरे यार मेरी तुम भी, मूवी तीन देवियां, लता जी किशोर कुमार जी दी आवाज़, ईयर 1965, थैंक्स। या आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लेना, तुहाड़ी फरमाइश पूरी हो रही है महाराज। थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए, और सुनो फिर अपनी पसंद का ट्रैक।

दिल चाहता है प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो हरीश दिनाल और फरमाइशां तुहाडियां मैं पूरियां कर रहा हां। 9855 10 10 27 नंबर साडा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर ते तुसी भी जेकर नहीं भेजी फरमाइश फटाफट भेज दियो। मैसेज पढ़ते हैं अगला जी, आदरणीय प्रसारक जी सप्रेम नमस्कार, फिल्म सूरज और चंदा गीत तेरे नाम का दीवाना तेरे घर, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक विनोदपुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आ जाओ फिर तुहाडी पसंद आ रफ़ी साहब की आवाज़ दे विच ट्रैक सुनते हैं तेरे ना, नहीं रफ़ी साहब की आवाज़।

107 FM रेनबो ते थोड़ी इन्फॉर्मेशन दा प्रोग्राम दिल चाहता चल रहा और फटाफट फरमाइश एक होर पढ़ते हैं जी। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। फिल्म आशा गाना आशाओं के सावन में मार हरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवेद हसन अब्बासी सुहेल हसन अब्बासी रसीद वारसी अनम अब्बासी यसफ अब्बासी सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी आपका तहे दिल से शुक्रिया। एक और मैसेज पढ़ते हैं जी। राम राम जी कोई भी गीत जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी हरीश जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं एक फरमाइश के साथ। ये फरमाइश जड़ी है एक ही इस वेले पूरी हो सकती है जी। 4-5 मैसेज अन्य सॉन्ग वाले ज़रूर शामिल करें शायद मेरी रिक्वेस्ट बेकार जाएगी। मैसेज थोड़ा हुण पढ़िया गया जी। मैसेज भेजने के लिए थैंक यू और फटाफट असी ये ट्रैक प्ले करते हैं इस प्रोग्राम में इतने ख़त्म करते हैं और इस प्रोग्राम का अकेला ट्रैक आशाओं के सावन में प्ले है जी। मैं मिलदा नेक्स्ट।

मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गए थे। मैं आज भी उन्हीं परिस्थितियों में हूँ जहाँ तुम जिनमें तुम मुझे छोड़कर गए थे। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ लेकर शाम गजल। इस खूबसूरत रात नूं होर भी ज्यादा खूबसूरत और होर भी ज्यादा इश्कमय बनाउण दे लई हाजिर हां मैं, और उम्मीद है कि ये रात एक गहराउं दी रात होर भी खूबसूरत होएगी इना खूबसूरत खूबसूरत गजलां दे नाल जो गमे इश्क नूं भी प्यार दे विच तब्दील कर दिंदी है, जिसदा कोसा कोसा सुकून गमेश कदाही नाल नाल मिलता रहता है।

सुबह आंख खुलते ही पहला ख्याल तुम्हारा आता है। जब भी दोस्तों के बीच होता हूं तो तुम्हें ही याद करता हूं। कोई धुन कान में घुल जाए तो तुम्हें सोचता हूं। चांद को देखूं या फिर कोई फिल्म देखूं या कोई किताब पढ़ूं, हर कहानी में हर अल्फाज में मुझे सिर्फ तुम नजर आते हो। और रात को सोने जाऊं तो रोज सपनों में तुम आते हो। ये कैसा इश्क है, ये कैसा इश्क है जो तुम फरमा रहे हो। मेरे ना होकर भी क्यों, मेरे ना होकर भी क्यों तुम मेरे होते जा रहे हो। ये कैसा इश्क है जिसे मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल।

कोई पास ना भी हो तो भी वो पास हो। किसी से कुछ कह रहे हों हम तो उसे सुनाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन हम उसकी मौजूदगी महसूस कर रहे।

ए हो। गहराई तो देखिए इस अधूरेपन की, वो शख्स पास नहीं है फिर भी रग रग में मौजूद है, उसकी चाहत में हम कुछ यूं बंधे हैं कि वो साथ भी नहीं है और हम अकेले भी नहीं है। ये है इस इश्क की अदायगी, इसका असर।

सोचता हूं मैंने इतनी मोहब्बत देनी है तुम्हें कि हर किसी की तकदीर तुमसे जलने लगे, तुम्हारे हिस्से में ऐसा इश्क लिखूं कि लोग ऊपर वाले से तुमसा नसीब मांगे, हर कमी को अपने प्यार से भर दूं, हर दर्द को अपनी बाहों में समेट लूं। अगर कभी दुनिया तुम्हें लगे तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी हो। शायद ये मेरा एक तरफा प्यार तुम्हारे लिए परफेक्ट ना हो, पर इतना जरूर होगा कि तुम एक दिन मुस्कुराकर कहोगी, किसी ने मुझे सच में बेइंतहा चाहा था, किसी ने मुझे बेइंतहा चाहा था और मुझे उसका पता ही नहीं था।

मीलों की दूरी पर हो तुम, पर दिल के सबसे करीब भी हो तुम। एक शहर ना सही, अलग रास्ते सही, पर हर दिन मेरी दुनिया में शामिल हो तुम। कभी मन करता है तुम अपनी तस्वीर से निकलकर आ जाओ और तुम्हारे पास बैठकर बस खामोशी में मुस्कुराऊं। यकीन है ये दूरियां एक दिन हार जाएंगी और उस दिन मैं तुम्हारे पास होऊंगा और आंखों से बहते होंगे आंसू, पर उम्मीद है कि वो आंसू खुशी के हों और तुम मेरे पास हो, मेरे साथ।

एक प्यार का नगमा है जिसका आगाज हो चुका है और हरीश नाल है तुहाडे और उम्मीद है कि इस खूबसूरत रात को खूबसूरत होर बना रहा मैं इस सफर दे नाल। शामे गजल तो बाद एक प्यार का नगमा है प्रोग्राम दे नाल मैं नाल ही रहांगा तुहाडे ठीक 11 बजे तक। ये साडा सिलसिला इस तरह चलता रहेगा और रेट्रो सोंग्स का दौर नगमिया का दौर ओल्ड इज गोल्ड हो रहा स्टार्ट।

मोह नहीं है ना, मोह नहीं है सो तुझे बांधा नहीं है, खुद बंध गए तुमसे। तुझे पाने की जिद नहीं है, बस तुझ में खुद को खो देना ही काफी लगा। तुझे थामा नहीं सिर्फ महसूस किया है, तेरे बिना भी तुझ में ही जिया है। ये बंधन किसी डोर से नहीं एहसासों से जुड़ा है, जहां तू भी आजाद है और मैं भी, और मैं बस तेरा हूं, सिर्फ तेरा।

मेरे ख्वाबों की दुनिया में कोई दूरी नहीं, मेरे ख्वाबों की दुनिया में कोई दूरी नहीं, कोई दीवार नहीं, वहां तुम सिर्फ मेरे हो, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के। हकीकत भले ही हमें दूर रखे, पर ख्यालों में तुम हर बार मेरे पास लौट आते हो। इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि अगली बार मेरी ये कल्पनाएं हकीकत बन जाए। क्या पता, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये बन जाएंगे हकीकत?

हमारी अब मुलाकात नहीं होती, मुझे पता है अब बात भी नहीं होती, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि मैं तुझे सिर्फ आंखों से ही देखूं। तेरी याद का आना भी तो तेरे दीदार से कम नहीं है ना। मेरे लिए तो वही दीदार है, मेरे लिए तो वही हसी रात है, मेरे लिए तो वही तुम हो, तेरी याद।

कभी कभी किस्मत भी अजीब खेल खेलती है ना? वो तुम्हें उससे मिला देती है जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे, मगर जगह और वक्त अनुकूल नहीं होता। फिर वही किस्मत उसे तुम्हारा होने नहीं देती और तुम बस प्रार्थना करते रह जाते हो कि शायद किसी और जन्म में वक्त किसी और जन्म में वक्त हमारे अनुकूल हो, हमारे साथ हो, हमारे पास हो, हमारे दोनों के अनुकूल हो, परिस्थितियां साथ हो और हम दोनों पास हो किसी और जन्म में।

जिन राहों पर तुम्हारे साथ चला हूं, अचानक दिल रुक सा जाता है जैसे तुम अभी वहां से आओगे और आवाज दोगे उन्हीं राहों पर। कहते हैं समय के साथ सब भूल जाता है, पर उन्हें कैसे समझाऊं, कुछ लोग कभी भुलाए नहीं जाते, वो तो दिल में बस जाते हैं सांसों की तरह, और जब तक सांस चलती है तब तक उनका नाम भी साथ साथ चलता है। और वो लोग कभी भी इस दिल से जाते नहीं हैं, कभी भी।

एक प्यार का नगमा है। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो हरीश दे नाल, और इस प्रोग्राम नूं इत्थे खत्म करन दा वेला आ गया, और जिंदगी दे सफर दे विच तुहाडे नाल दोबारा मुलाकात होएगी। इस हसीन सफर नूं लै के दोबारा हाजिर होवांगा मैं। तद तक लई मैनूं दिओ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।